उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हर चीज जो आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह कर रही है और वो जबरदस्त और हकीम है। ए अल्लाह पाक, तू रहमान है, तू रहीम है। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमें माफ फरमा। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। ए अल्लाह पाक, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं, हमारे वतन के अवाम भी परेशान हैं। हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल। अपने प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अमान दे दे, हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे। तू रहमान है, तू रहीम है, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। ए हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाएं, उन पर गिरफ्त न कर। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस बार को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर। तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। ए करीम, हमें माफ फरमा। तू रहमान है, तू रहीम है। हमारी दुआएं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم.

0: Welcome to Islamabad.
1: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
2: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
3: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
4: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

0: आपके लिए FM 11 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक म्यूजिक।
1: The Artist Season 1।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

नहीं रहा तुझको सुनानी, सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून, दुनिया झूठी दुनिया वाले है फेक, उनके बारे में ये मेरा है टेक, I don't care what you think, what your emotions are, I'm gonna call it a spade is a spade, कैसे करे कोई ना सवाई, हर कोई समझता अपने को वाइस, बातें ही बातें हैं वो सारी बातें, अंदर से कोक लेक दूजे को रोक, देखो नहीं ये अपने आप को टोक,

0: 8 AM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Sunday 29th of Zikad, May the 17th, 2026. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The President and the Prime Minister have expressed the government's commitment to expand digital access and improve connectivity across the country. The Minister of State for Finance says Pakistan is steadily advancing towards a cashless economy. All the four provincial governments have lifted the restriction on market timings to facilitate traders and the people on Eid al-Adha. 11 Palestinians have been martyred by the Israeli security forces in Gaza. On the second day of the last cricket test match against Bangladesh in Sylhet, Pakistan will resume their first innings at the overnight score of 21 runs for the loss of no wicket today. The National Disaster Management Authority has warned of widespread rain in various parts of the country from tomorrow till Friday.
1: One FM.
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: वाह भाई, गाय वगैरह सब बिक गए, कैश रख लिया ना इवाज़ से?
4: कैश अब जेब में नहीं, बराए राज बैंक अकाउंट में। पेमेंट लेता हूँ सिर्फ राज से, यही है। कैश की पक्की हिफाजत
5: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर क्यूआर कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराहे रास्त
1: 101 FM
6: सामने वालों का बकरा भी आ गया बाबा चले ना मंडी
4: अभी चलते हैं
7: पैसे रख लिए
4: किस लिए अब तो मंडी में भी पेमेंट होती है बराहे रास्त
5: इस बकरीद पर कैश ले जाने के झंझट से बचें और रात से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर क्यूआर कोड स्कैन करें और पैसे ट्रांसफर करें बिल्कुल फ्री तो कुर्बानी के लिए पेमेंट हाथ के हाथ बराह रास्त
8: दिस इज एफएम 101
9: कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर क्वेटा हैदराबाद फैसलाबाद सियालकोट मुल्तान बहावलपुर सरगोधा लारकाना मिट्टी बिच्छा खैरपुर कोहाट बन्नू एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101
10: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान

0: Welcome to Islamabad.
1: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
2: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
3: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
5: Entertainment, ho ya updates, ye hai tumhari har mood ka dost.
6: Din raat, har baat, FM 101 station of the nation.

0: best music. Q101. Electric.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: We'll be right back after this short commercial break.
1: Sunte Radio FM 101.
2: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: This is FM 101.
1: I'm on the way, but it's 1/2 hour.
2: Just wait a second.

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: دیکھیے فطور جمعرات
1: And now you are tuned into
2: FM 101
3: FM 101
4: FM 101

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर और वजीर आजम ने मुल्क भर में डिजिटल रसाई को वसत देने और राबते की सहूलियात को बेहतर बनाने का हुकूमती अज़्म जाहिर किया है। ISPR ने कहा है कि भारतीय फौज के सरबराह का हालिया बयान इस बात की अक्कासी करता है कि 8 दहाइयां गुजरने के बावजूद भारतीय क़यादत ने कोई सबक हासिल नहीं किया। ज़िलहज 1447 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम कराची में होगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.
1: Sunte rahiye FM 101.

लो फिर झंग आले हो जेड़े बंदे झंग दे रहने वाले इस टाइम मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो बंदे जेड़े मेरी बोली नू पसंद करते हैं वो बंदे जेड़े अदब दे शौकीन हैं जिन्हां नू चाहे मेरे प्रोग्राम सुन

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

सुनो एंजॉय करो, आवाज उच्ची करो, मोबाइल की आवाज उच्ची करो, रेडियो की आवाज उच्ची करो, एंजॉय करो। और बड़िया परेशानियां ने आरजे गुलाम ली जावे तम दसावन वास्ते, और थकावट दूर करने वास्ते, परेशानी दूर करने वास्ते।

क्यों जमाल भाई, हमें घर ले। जमाल भाई लेट आए हो। ये घर मेरे तू आवे, आज रले दरबार ते सौ चावणी। लो जी मेरा बिरा प्रोग्राम सुनदा पे ने, मजर मजर प्रोग्राम सुनदे पे ने राजगढ़ तू। सुना मेरा बिरा बड़ा चंगा वीर है, ये सर्दियां दे विच होर मैनू चंगा लगदा। ओदी वजह भाई मैंने दसणी, सर्दियां दे मौसम दे विच मैं दे नाल यारी पक्की कर लैंदा।

0: This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.

0: This is FM 101.
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: देखे तो जो इधर

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: Pakistan and assalamu alaikum to all the Lahorians, to all the Punjabians, to all the Pakistanis and of course to all the sweetheart listeners of FM 101. This is RJ Mahvish Zaidi aur aap hi mere saath maujood is waqt. Hum hote hain 5 baje se lekar theek 7 baje tak is khoobsurat si Sunday special mein aapko kehti hoon welcome at every Sunday. बिल्कुल जी, संडेज़ में हम आपका बहुत सारा वेलकम करते हैं। बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ होते हैं मौजूद हमेशा की तरह, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम बहुत ही खूबसूरत बात के साथ।
2: जिंदगी की रात,
1: क्या बात है। आज मेरा दिल चाह कि मैं कुछ इस तरह से आपके साथ ओपनिंग कर रहा हूँ प्रोग्राम की, तो बाकायदा आगाज़ करेंगे खूबसूरत बात के साथ। तो मेरे पास है, कहते हैं जिस चीज़ के बारे में तुम सोचते रहोगे वही तुम्हारी ज़िंदगी में आती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम हर वक्त सोचो कि ज़िंदगी मुश्किल है तो दुनिया वाकई मुश्किल बन जाती है, लेकिन जब तुम यकीन कर लेते हो कि हर मसले का हल है तो कायनात तुम्हारे लिए नए नए रास्ते खोल देती है। सोच सिर्फ ख्याल से नहीं होती, ये वो बीज है जिससे तुम्हारी हकीकत बनती है। इसलिए अपने जहन को शक से नहीं बल्कि यकीन से भरो, क्योंकि मुस्बत सोच वो ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। इवन वो आपने सुना होगा, कहते हैं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल को अगर आप चंक्स में डिवाइड करना शुरू करें तो वो बनता है आई एम पॉसिबल। तो हमारी जो आज की गुफ्तगू शनीद है वो कुछ इसी हवाले से है और मेरा टॉपिक भी। तो मेरी कोशिश होती है कि उन चीज़ों को डिस्कस किया जाए, उन चीज़ों को महवे गुफ्तगू लाया जाए और सुना जाए जो हमारी रूटीन में हमारे साथ होती रहती हैं, और अक्सर हम उनको इग्नोर कर देते हैं कि भाई ये तो हमारी रूटीन का हिस्सा है, इनका तो कोई ठीक है या रूटीन का मसला है, छोड़ो इसको, ये ऐसा ही है। हम तो इस तरह की बातें करते हैं ना, लेकिन दर हकीकत वो जो हमारी रूटीन होती है ना, समटाइम्स वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे लिए बिल्ट अप कर देते हैं, जिनको तोड़ना या जिनको जिनमें से बाहर निकलना, एस्केप करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक और क्या ही कहने हैं, बहुत ओल्ड ट्रैक, कभी कभी सुनने का भी अपना ही मज़ा होता है, और एज अ बीजीएम मैं तो थोड़ा आपको भी सुनवा रही हूँ। तो इसी के साथ जी, आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, हमारे साथ अपने शेयरिंग्स कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। फेसबुक के पेज पर www.facebook.com/FM101Lahore का पेज हाजिर खिदमत है, उस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा 4471 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत आसान है, 101 कैपिटल एल लेकर स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए और उसे भेज दें 4471 पर। This is the very simplest way. You just add on in the show.
2: Shayad mere tadapne ka andaaz
1: bha, aur shayad aapko bhi mera ye andaaz pasand aaya hoga. Kya khayal hai?
2: Aanson se bhi kareeb mere aa gaya koi.
1: ज़िंदगी की राह में, ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, उन चीज़ों को मैनेज करना सीखिए। थोड़ा सा हमें स्क्रैच करने की ज़रूरत होती है और चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के बहुत आगाज़ में जिस बात से आगाज़ किया है कि आप अपनी सोच से चीज़ों को बदल सकते हैं, वो कहते हैं ना ख्यालात से आपके हालात बदल सकते हैं, हालात से कभी ख्याल नहीं बदलते, हमेशा आपके ख्याल हालात को जन्म देते हैं। सो कीप वॉचिंग योर ख्यालात।
2: बाहों को छू लिया।
1: Enjoy this track. I'll be right back. Keep listening FM 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

एक आपने इंजॉय किया ना संडे की शाम को, उसके बाद आप फ़ौरन से खाना खा लिया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, हम तो रात 12-1 बजे पार्टी करते हैं, ये है वो है, नहीं 12-1 बजे वाला कोई हिसाब नहीं होता, क्योंकि अगले दिन फिर मंडे होता है और आपका एक बिज़ी लाइफ जो है ना, बिज़ी रूटीन जो है वो शुरू हो जाती है। इसीलिए कोशिश किया करें कि काम जो है ना वो आपका थोड़ा नज़दीक नज़दीक रहे, ताकि आपको भी मसला ना हो। और इसी के साथ साथ मैंने जैसे कहा है कि मैसेजेस मैं शामिल नहीं करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, इसलिए क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कदर ट्रैक को प्ले करूँ, और कुछ इस तरह से दिल चाह रहा है मेरा। आसिम अज़र द ब्यूटीफुल वॉइस, द ब्यूटीफुल सिंगर ऑफ पाकिस्तान, सैया इज़ अ ट्रैक। So enjoy this beautiful track. I'll be right back. Keep listening FM 101.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

All right, listeners, welcome back right after a very beautiful track. Aasim Azhar on the vocals. और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो पसंद करते हैं आसिम अज़हर को सुनना और उनके ट्रैक्स जो हैं वो प्ले करने के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं. तो जी, मैंने सबसे पहले आज आसिम अज़हर को प्ले कर दिया. सो होपफुली बहुत सारे लिसनर्स की रिक्वेस्ट जो है वो कम्प्लीट हो गई होगी, राइट? और अजी बात हो रही है संडे स्पेशल के हवाले से कि बहुत सारी स्पेशल डिशेस जो हैं वो संडेज़ में बनती हैं. बहुत सारे स्पेशल लोगों से हम संडे में मुलाकात करते हैं. बहुत सारी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो संडेज़ के साथ जो हैं वो मंसूब हैं. और कुछ लोगों के लिए संडे वाकई में बहुत स्पेशल होता है क्योंकि उन लोगों ने जाना होता है कहीं बहुत स्पेशल जगह पर और किसी से मिलना भी होता है. और कुछ लोगों ने घर आना होता है. तो बहुत सारे मामला जो ज़िंदगी के हैं वो संडेज़ में

ही कवर होते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसिडेंट्स ऐसा हो जाता है कि कोई हैपनिंग ऐसी हो जाती है, वो बंदा कहता है यार संडे तो है ही अच्छा नहीं. तो इसलिए प्रोज एंड कॉन्स जो है ना वो साथ साथ चलते हैं, प्लस माइनस जो है ज़िंदगी का वो साथ साथ ही चलता है. और राइट जी, इसी के साथ हम ट्रैक को शामिल भी करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो मैं आज का आपको बता देती हूँ कि थ्री थिंग्स यू मस्ट से नो इन 2026 में. तीन चीज़ों को ना कहना सीख लें, क्योंकि अगर आप ये ना कहना सीख लेंगे ना, क्योंकि हमें बचपन में ये तरबियत दी जाती है कि जी आपने हाँ कहना है, हर इंसान का काम कर देना है, हर इंसान के आगे आपने जो है ना अपना जो ये बेंट है मतलब सर जो है वो झुका देना है, और लोग आपकी इज्जत भी तभी करेंगे जब आप उनको हाँ कहना सीख जाएंगे, आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे. बचपन में हमें यही बातें ना माँ बाप सिखाते हैं, बड़े हमारे सिखाते हैं, खाला पुफी ताती चाची ताई हमें सारे यही बताते हैं कि जी आपने हाँ कहना है, और हाँ कहने वाले की बहुत इज्जत होती है, उसकी बहुत तारीफ़ होती है, और इस तरह की बहुत सारी जो बातें हैं ना वो हमें बताई जाती हैं बचपन से. लेकिन बड़े होते होते होते कुछ पैटर्न्स जो है ना वो चेंज हो जाते हैं. दुनिया की हकीकत कुछ और ही होती है, कुछ अलग सी होती है. जो इंसान हर बात पर सर हिला देता है और कहता है कि यस ठीक है मैं करूँगा, और वो कहते हैं ना अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कभी भी, और ना ही प्रोवाइड करना चाहिए अपना आप कहीं पर भी कि जी मैं हाजिर हूँ हर काम के लिए जब तक, और वॉलंटियर भी नहीं करना चाहिए इस तरह से. मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे ये बात सिखाई थी, क्योंकि मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी और हर बात में कहती नहीं जी मैं ये एलिजिबल हूँ, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट. तो मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि बेटा आप बेशक कर सकती हैं, आप में पोटेंशियल है, लेकिन कभी भी अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, ना किसी को अलाउ करना है. तो मुझे उनकी ये बात ना तब समझ नहीं आती थी, मैं कहती थी पता नहीं क्यों कहा इन्होंने, बहरहाल मैं हर बात पे यस सर कह देती थी. तो उसका ये हुआ कि बड़े होते होते होते आपकी जो एक पैटर्न्स होते हैं जो हमें बताए जाते हैं, जिनके ऊपर हम ज़िंदगी गुजारने का सोच लेते हैं, जो वर्क ऑफ स्टाइल या जो भी लाइफ स्टाइल हम अडॉप्ट करते हैं, वो कुछ कुछ चेंज हो जाते हैं. क्योंकि देखिए मूड्स चेंज हो जाते हैं, स्टाइल्स चेंज हो जाते हैं, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं. तो इस वजह से हमें भी सोचने की ज़रूरत होती है जैसे जैसे ज़माना बदल रहा होता है. तो इस पर आज हम करेंगे बात कि कौन सी ऐसी तीन चीज़ें हैं जो कि हमें नो कहना 2026 में सिखा देती हैं, और हमें कहना भी चाहिए नो, क्योंकि हर वक्त यस सर जो है वो नहीं सही होता. राइट, और इसी के साथ चलेंगे हम नेक्स्ट ट्रैक की जानिब. और मेरे पास है कुछ कुछ कुछ कुछ किस तरह से भला, मेरे पास है जी कुछ रुखसाना के नाम से, अली ज़फ़र. ब्यूटीफुल ट्रैक, पीपल लिसन दिस, आई विल बी राइट बैक.

0: This is FM 101.
1: Alright listeners, this is FM 101 and this is RJ Mahvish Zedi और बहुत सारे listeners हमारे साथ हैं मौजूद हैं। चलते हैं सबसे पहले आपके Facebook के messages के जानिब। तो सबसे पहले हमारे साथ जी रजा चौधरी कहते हैं Assalamualaikum, Waalaikum Assalam, welcome to the show, to you as well। और बहुत सारे लिसनर्स को इन्होंने सलाम कहा है शमसी रेडियो लिसनर्स क्लब लाहौर पाकिस्तान की जानिब से, और बहुत सारे नाम लिए इन्होंने जी। बिल्कुल जी, इन सब को जो है ना अस्सलाम वालेकुम, और इनको वेलकम कहती हूँ मैं अपने प्रोग्राम में। इस तरह आपने बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत शायरी किया रजा चौधरी, वो मैंने पढ़ ली है, थैंक यू वेरी मच, बंडल ऑफ थैंक्स। एंड उसके साथ साथ कहते हैं ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, इससे जब भी बात हो तो इंसान रिलैक्स फील करता है, जैसे कोई बोझ हल्का हो क्या हो। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत अलग लोग होते हैं ऐसे लोग जो अपनी चंद बातों से दूसरों को बहुत खुशी देते हैं, इनसे की हुई दो मिनट की बात भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट का बायस बनती है, आप अपने गम भूल जाते हैं चंद लम्हों के लिए, सही, लेकिन अगर जिंदगी में कोई ऐसा है तो उसकी कद्र करें। वाओ, दैट्स सुपर्ब सेइंग, जबरदस्त। और रजा चौधरी, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की, मुझे बहुत पसंद है कि वाकई आपकी जिंदगी में ऐसे जो पॉजिटिव लोग हैं ना वो बहुत कम होते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं, आपकी शेयरिंग्स के में, आपकी सेलिब्रेशंस में बहुत सारी एनर्जीज आपके साथ जो है ना वो टुगेदर होती हैं, वहाँ पर दुआ को लोगों का साथ कभी ना छोड़िए। जो ब्लेस्ड पीपल होते हैं, जो हमेशा दुआ देते हैं बेलॉस होकर, जो आपसे प्यार करते हैं, जिनको आपसे कोई गर्ज नहीं होती, जिनको आपकी दौलत से, आपकी गाड़ियों से, आपकी इमारतों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, उनका कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन वो फिर भी खुश होकर अगर आपको दुआ देना, तो इसका मतलब कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, अल्लाह का कोई ख़ास करम है आपके ऊपर कि वो आपके साथ टुगेदर हैं। तो इसके साथ साथ फरहान इकबाल ने कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम मुल्तान, हेलो हाउ आर यू, कहते हैं जी वेलकम टू द शो, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और टीम पास है हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम नूर, लाहौर से है नूर खान, ऑलराइट, कागजी घाट ओके, फ्रॉम शब कदर के पी के, ओके शब कदर, ओके के पी के से हैं जी आप, और ओके जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोग्राम में, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा जी हम अब बढ़ेंगे आपके 4471 पर जो मैसेजेस हैं उनकी जानेब, उसमें सबसे पहले इरम है हमारे साथ, कहती जस्ट एंड वन सॉन्ग, ओ माय गॉड। इरम, आपने जो रिक्वेस्ट करना है ट्रैक वो बताइएगा जो भी आपको अच्छा लगता है। वैसे तो मैंने आसिम अज़र का पहले ही ऑन एयर कर दिया था फर्स्ट ट्रैक, बिल्कुल, ताकि बहुत सारे लोग जो आसिम अज़र की रिक्वेस्ट करते हैं कि जी प्लीज़ उनको प्ले किया जाए, तो उनकी मैंने ट्रैक रिक्वेस्ट वो लगा दी। और इसके साथ साथ बात हो रही है जी कि थ्री थिंग्स यू मस्ट से नो इन 2026, व्हाई यू टेक बैक योर रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत को वापस लें, ये नहीं आप हर वक्त सर हिला दें कि ठीक है जी आई एम अवेलेबल। दुनिया उसे देखिए, एक पेपर जैसे है, पेपर हमारे लिए यूजलेस हो जाते हैं ना, तो हम उन्हें बिल्कुल तरोड़ मरोड़ के डस्टबिन में फेंक देते हैं कि भाई हमें अब इनकी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह वो आपका भी यही हाल करते हैं, जब आप उन्हें हर वक्त अपनी सहूलत के हिसाब से आप कहते हैं ठीक है मैं अवेलेबल हूँ, आप तो अपनी तरफ से एक पॉजिटिव उन्हें दे रहे होते हैं, लेकिन वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो कभी भी अपने आप को फॉर ग्रांटेड ना लेने दें किसी को, क्योंकि दूसरे अपनी सहूलत के हिसाब से आपको फिर कूड़े की टोकरी में जो है ना वो फेंक देते हैं, और असल में जो आप समझ रहे होते हैं ना कि आपने जी अपनी इज्जत नफ्स कमाई है या आपने रिस्पेक्ट कमा ली है, वो रिस्पेक्ट नहीं होती, वो आपने अपनी इज्जत नफ्स का खुद ही गला घोंट दिया होता है। तो इसमें सबसे पहला रूल ये है कि डोंट बी अवेलेबल फॉर एवरी टाइम, हर इंसान को हर वक्त ये ना कहें कि जी मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। जैसे मैं इसकी मिसाल इस तरह से दूं कि जैसे सोने की मिसाल है, सोना बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता है, इसलिए वो बहुत कीमती धातु है और वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है। जैसे रेत है, रेत की मिसाल इसलिए कि हर जगह पर बिखरी पड़ी आपको नज़र आती है, इस वजह से रेत की वो वैल्यू नहीं होती, हालाँकि तामीराती काम में जितनी रेत और ये बजरी और ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े घर जिस पर खड़े होते हैं, जिस पर आप बड़ा मान कर रहे होते हैं जी ये मेरा घर है, तो वो छोटी छोटी रेत के ज़र्रात ही होते हैं जिसने पूरी बिल्डिंग और पूरा घर जो है ना वो आपका बना होता है। तो इसलिए लिमिटेड जो है ना मैं कहती हूँ अपने आप को रखें, कोशिश करें अपनी हदबंदी खुद ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा सोशलाइज होने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, जब आपने लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें हर वक्त अवेलेबल नहीं होंगे, मेरा तो ये ख्याल है। और आई जी के साथ चलेंगे नेक्स्ट ट्रैक की जाने भी, क्योंकि हमने बहुत सारी कर ली हैं बातें आपके साथ। और मेरे पास क्या है जी इस वक्त आपके लिए, मेरे पास है आहा, मेरे पास है जी ये ट्रैक,
2: नहीं रह
1: मन जोगी, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, साहिर अली बग्गा एंड सबीना फारूक, बहुत खूबसूरत सा ट्रैक है, इसको इंजॉय कीजिए मेरे साथ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है यार तेरे बिना। enjoy this track. I'll be right back. Keep listening FM 101. Oh my god, you can dial 111-111-101.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दिस इज FM 101।

राइट लिसनर्स, वेलकम बैक राइट आफ्टर अ ब्यूटीफुल ट्रैक. और आप सुन रहे थे हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक साहिर अली बग्गा का, और वो सुना रहे थे आपको मन जोगी. और इसके साथ साथ बहुत सारे और लिसनर्स भी हमारे साथ हैं. बरकत रमदानी बलूच हमारे साथ हैं और फ्रॉम जाफराबाद बलूचिस्तान से. तो वो कहते हैं जी प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समातों का कि प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, टॉपिक आपको अच्छा लगता है, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड होती है आपकी पार्टिसिपेशन के. आप जब पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है. इसके साथ साथ 4471 पर चलें तो जैन हमारे साथ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जैन, कहते हैं प्रोग्राम फुल टाइम बहुत अच्छा जाता है आपका, और पिछला भी प्रोग्राम बहुत अच्छा था. थैंक यू वेरी मच जैन. और कहते हैं ये प्रोग्राम भी अच्छा और टॉपिक भी आज का आपका अच्छा है कि वाकई में अगर इंसान को इज्जत कमानी होती है, आजकल इज्जत हाँ कहने से या सर हिला देने से जो है वो नहीं मिलती. हमेशा आप थोड़ा सा जब पीछे हट के नो कहना सीखते हैं तो लोग आपके नो को जो है वो थोड़ा सा कहते हैं किसी को झंझोड़ने के लिए आप नो कह देते हैं कि नो नहीं करना. जब बच्चा भी देखें अक्सर कोई गलत काम कर रहा हो, स्विच में कभी उंगली डाल रहा हो या कुछ भी ख़राब कोई ऐसी काम कोई भी हरकत कर रहा हो तो हम बच्चे को फौरन मना करते हैं नो, तो बच्चा एकदम ना वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं. बच्चे बड़ी हैरत से आपको देखना शुरू कर देते हैं कि मुझे नो क्यों कहा इन्होंने, इसमें क्या ऐसी रीज़न है कि इन्होंने मुझे नो कह दिया है. तो इसका ये सिग्नल होता है, ये अलार्म होता है कि आपने ये काम नहीं करना. तो आपका नो उनके लिए थोड़ी सी आपकी इंपॉर्टेंस उनके आगे बढ़ा देता है कि जो काम आप कर रहे हैं ना उसमें नो का थोड़ा सा फैक्टर इसलिए भी है क्योंकि उस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं है. क्योंकि समटाइम लोग लेकिन जो हर दफ़ा ही नो कहते हैं ना हर बात पर ही कि नहीं जी मैं तो नहीं कर सकता, हर बात पर कहते नहीं जी आज ही नहीं. आप कभी येस भी कह दें किसी काम पर, ठीक है हाँ आज मैं कर सकता हूँ, तो आप अगले का बिहेवियर रवैया देखिएगा कि एकदम आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा. लेकिन जब आप उसको ना ही ऑनवर्ड्स ना कहते, मैं ये नहीं कह रही ये आपको लर्न नहीं करवा रही है, ये बारावर नहीं करवा रही कि आपने नो ही कहना है. अगर आप नो कहते रहेंगे तो ऑब्वियसली जो आपकी इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी. नहीं, हर वक्त के लिए येस ना कहें, कभी ना कभी. वो कहते ना 100 में से कोई एक दो दफ़ा आप किसी को नो भी कहते नहीं यार आई एम नॉट अवेलेबल, बिकॉज आपकी अवेलेबिलिटी हर टाइम के लिए भी जो है ना वो दूसरे के लिए कहेगी ठीक है यार इसको तो जब मर्जी बुला लो ये आ जाता है. ऐसी बात ना होने दें. और दूसरी एक बात, हम आजकल ना बड़ा मजाक करते हैं और अगले को ये कह देते हैं कि ये तो हम मजाक में बात कर रहे थे, आप तो सीरियस ही हो गए. आप मजाक में पहले आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, फिर आप उसके बाद उसका नाम लेते हैं और महफिल में बैठे हुए लोगों को भी अपने साथ मिलाकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो वो जो बंदा होता है ना वो बड़ा कन्फ्यूज़ सा हो जाता है. तो जब आप सबसे जो मैं कहती हूँ जो आपकी इज़्ज़त को दीमक की तरह जो चीज़ खाती है ना वो यही है कि मजाक के नाम पर होने वाली जो बेइज्जती है ना वो आपको फेस करना पड़ रही होती है. तो जब आपको कोई ये फील करा रहा हो ना तो उसको उसका रिप्लाई ये है कि आप एक बिल्कुल ठंडे लहजे में ये कहें कि मुझे ऐसा मजाक नहीं पसंद. तो थोड़ा सा जो महफिल होगी ना वो जो एक आपकी कहकहों से गरमा रही होगी महफिल, वो एकदम के लिए साइलेंट हो जाएंगे लोग और वो कहेंगे वाकई यार इसने बुरा मनाया इस बात को. तो अगर आपने अपनी रिस्पेक्ट करानी है ना, अपनी इज्जत वापस लेनी है जो आपकी खोई हुई इज्जत है, थोड़ा सा आपको स्टैंड लेना पड़ेगा. लोगों के साथ हर वक्त हंसी मजाक के साथ ना पेश आए, ना ये शो करें कि आप बहुत ज़्यादा सोशल हैं, आपको बहुत ज़्यादा हंसी मजाक का शौक है, आप बहुत फ्रेंडली हैं, आप ऐसे नो. थोड़ा सा अपनी लिमिट्स के अंदर रहने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होने की भी ज़रूरत नहीं है. जैसा हर चीज़ पे आप नो कह देंगे नहीं ये तो बहुत ऐसा है, नहीं मैं तो ये नहीं खाती, नहीं ये तो ऐसा है, इसमें से तो यूँ है, इसमें का तो जायका ख़राब है, या वट एवर. सही चीज़ को भी गलत ना कहें, हमेशा जो गलत है उसको गलत कहें और हर वक्त अपनी अवेलेबिलिटी ना प्रोवाइड करें. और इसी के साथ हम नेक्स्ट ट्रैक की जानी बढ़ेंगे और मेरे पास है कुछ कुछ कुछ कुछ इस तरह से है ना, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा. सो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, आई विल बी राइट बैक. यू पीपल डायल 111-111, कीप टेक्सटिंग ऑन 4471 एंड कीप कमेंट्स ऑन www.facebook.com/FM101 Lahore.

वेलकम बैक। और इसके साथ साथ बहुत सारे हैं लिस्टर्स हमारे साथ मौजूद, और बात हो रही है कि आप अपनी इज्जत जो है वो वापस ले लें, लोगों से जो खोई हुई है, टेक बैक योर रिस्पेक्ट और नो कहना जो है वो सीख लें। बहुत सारे लिस्टर्स होते हैं जो कहते हैं जी नहीं जी, मैं तो नो नहीं कह सकता, मैं तो ना कह ही नहीं सकता। देखिए, जब आप नो नहीं कहेंगे, इसका मतलब कि आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं ना लाइफ के, जो टारगेट्स हैं, वो क्लियर ही नहीं है। आप यानी कि आप उनको प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे का टारगेट है कि मैंने 2026 में यहाँ 27 में मैंने ये टारगेट अचीव करना है। तो अगर आप उस टारगेट के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए दिन रात एक की भी आपने, और कहीं कोई बीच में आके जैसे कोई कह देता है यार फलानी जगह पे जाना है, चलोगे, हम हैंगआउट्स करने जा रहे हैं, हम डिनर करने जा रहे हैं, आप भी चलो, ये है वो, तो आप कह देते हैं हाँ हाँ मैं अवेलेबल हूँ, मैं आ रहा हूँ। उस टाइम पर आपको कहना चाहिए नहीं नहीं मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बिल्कुल इस तरह। लेकिन ये नहीं है कि आप कह देंगे नहीं जी मैं तो अवेलेबल हूँ हर टाइम, खाने पीने के लिए भी अवेलेबल हूँ, हैंगआउट्स करने के लिए भी अवेलेबल हूँ, और अपना काम जो है मैं कोई बात नहीं आकर कर लूँगा, कुछ नहीं होता। हाँ, कोई बहुत अगर इमरजेंसी है किसी के साथ, कोई ऐसी कोई ज़िंदगी मौत वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो आप अपने काम को छोड़ दें। इतनी तो खैर सेंस आप लोगों में भी है, क्या ख्याल है। नुसरत साहिबा है हमारे साथ, फेसबुक पे मैसेज करें कितनी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, फिरोजपुर रोड से, और कहती कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक नुसरत, आप कैसी हैं? होपफुली कि आप ठीक ठाक हैं और इन्जॉय कर रही हैं प्रोग्राम को। इसके अलावा रजा चौधरी कहते हैं थैंक यू, आप ही थैंक यू सो मच, सुपर डुपर शो, आप भी बहुत सुपर डुपर हैं। और रियाज भट्टी हैं फ्रॉम शाहदरा, कहते हैं मेरा शहर लाहौर, क्या बात है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रियाज भट्टी, और कहते हैं रेडियो की शान, रेडियो की पहचान, वंडरफुल शो, थैंक यू सो मच रियाज भट्टी। इतनी खूबसूरत मैसेजेस का और इतने प्यार भरे मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ 111 पे आप लोग कॉल्स कर रहे हैं वो भी मैं अटेंड करूंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो चल रही होती हैं हमारे प्रोग्राम में साथ साथ, जो उनको लाइन अप करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मत सोचा करें कि आरजे जो है ना वो फ़ोन नहीं उठानी, शायद जानबूझ के फ़ोन नहीं उठाती, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे काम जो होते हैं ना वो साथ साथ चल रहे होते हैं, इसीलिए बताना जो था वो मुझे ज़रूरी था, क्योंकि बहुत दफ़ा जो है ना वो कॉल हुई है, लेकिन मैंने इसलिए उठाई क्योंकि बहुत सारे और छोटे छोटे काम जो होते हैं उन्हें, जैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं कमर्शल्स वगैरह ये वो, उनको लाइन अप करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप ये मत समझा करें कि मैं चाहे जानबूझ के आप लोगों की कॉल नहीं उठाती, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल राइट जी, इसी के साथ बात हो रही है कि थ्री थिंग्स यू मस्ट से नो इन 2026। बिल्कुल, 2026 में आप थोड़ा सा नो कहना सीख लें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन बच्चों को प्लीज़ थोड़ी सी यही तरबियत दें कि उन्होंने यस कहना है, वो ग्रेजुअली सीखते जाएंगे। आजकल के बच्चे वैसे इतना ज़्यादा डंप नहीं है ना, आजकल के बच्चे को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, छोटे सा जो है 4-5 साल का बच्चा जो है ना उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, उसको स्टोरीज़ नहीं सुना सकते, क्योंकि वो आपकी स्टोरीज़ में आएगा, मुझे कहा ये तो पुरानी हो गई हैं मामा कोई नई स्टोरी सुनाए। वेल जी, हम जब किसी को ना कहते हैं ना, तो हम उसको ना बहुत सारी एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्योंकि जिन लोगों को ना कहने की आदत ही ना होती, जो हर वक्त कहते हैं यस यस सर, हाँ हम करेंगे, हाँ ओके हमने कर लिया, हाँ हम अवेलेबल हैं, हाँ हम ये काम करेंगे, वॉलंटियर कर देते हैं कुछ लोग, तो जब वो किसी को कभी ना कहते नहीं यार वो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या मैं आपका काम नहीं कर सकता या कर सकती, तो उनके लिए ना एक आगे मज़ीद वो कहानी बना देंगे, वो एक्चुअली मैं इस वजह से अवेलेबल नहीं थी कि मैंने ये करना था, या मैं इसलिए अवेलेबल नहीं था कि मैंने ये करना था। आप एक्सप्लेनेशंस जब बनाते हैं ना, जब स्टोरी मेकिंग करते हैं ना बहुत सारी, तो वो नो की जो एक वैल्यू है ना वो भी डाउन कर देते हैं। इसलिए नो के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं होता, कोई कॉमा नहीं होता। इंग्लिश में जब आप नो लिखते हैं ना, कोई हाइफन नहीं होता, कोई स्लैश नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई स्टेरिक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, एक सिंपल नो होता है, अ बिग नो, राइट, विदाउट एनी न्यूमेरिक वैल्यूज एडेड। तो सिर्फ नो कहकर आप बात ख़त्म कर सकते हैं, इंस्टेड कि आप उसके आगे स्टोरी बनाना शुरू कर दें, बताना शुरू कर दें, अच्छा ये हुआ था इसलिए नहीं मैं किया। हाँ, जहाँ पे कोई बहुत बड़े लेवल की कोई बात है, जैसे किसी की शादी में जाना है या कोई और ऐसा इवेंट है, वहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप बात करें कि यार इस रीज़न की वजह से मैं अवेलेबल नहीं था। अदरवाइज़ आपको कहने की मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी ज़रूरत है। मेक योर डिसीजंस ऑन योर ओन, अपने डिसीजंस खुद लें, और अगर आपने नो कह दिया तो वो कहते हैं ना अपने पाँव के ऊपर खड़े रहें।
اور اسی کے ساتھ ساتھ نایاب ہیں ہمارے ساتھ، کہتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ ہی پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، تھینک یو سو ویری مچ نایاب، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ اور کہتی ہیں کہ آئی لو یو، یو ٹو نایاب، تھینک یو سو مچ۔ کہتی ہیں کہ ثنا ہے ہمارے ساتھ، اور کہتی ہیں کہ ایک ٹریک ثنا کو بھی ریکویسٹ میں کر رہی ہوں، اپنی مرضی کا کوئی بھی ٹریک جو ہے وہ اس کو میں نے ریکویسٹ کی، اپنی مرضی کا کوئی بھی ٹریک آپ اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیں۔ ثنا آپ نے اتنے زیادہ جو ہے نا نایاب، آپ نے لفظ کو ملا جلا دیا کہ میں کچھ کا کچھ پڑھ رہی ہوں، بٹ اینی ویز میں نے پھر بھی آپ کی بات کو سمجھ لیا، اور میرا خیال ہے لسنرس کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی میری بات۔ بات ہو رہی ہے کہ نہ کہنا جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا آپ کو ہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے آپ کو پرائرٹائز کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 2026 جا رہا ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے لیے تھوڑا سا آپ ہمت کر لیں، تھوڑی سی کوشش کر لیں۔ ہر وقت اپنے آپ کی اویلیبلٹی جو ہے نا وہ آپ کے لیے نقصان دہ، میں کوئی اللہ معاف کرے آپ کو نیگیٹو بات نہیں بتا رہی، ہاں ہر وقت کے لیے نو کہنا بہت بہت بری بات ہے۔ اور ارجی نذیر کھوسو کہہ رہے ہیں پروگرام بہترین ہے، اور آپ بھی بہت اچھے ہیں، بہت بہترین ہیں۔ صحبت پور بلوچستان سے ہیں جی نذیر کھوسو، اور انہوں نے میسج کیا ہے ہمیں فیس بک پر، تھینک یو سو ویری مچ نذیر کھوسو، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہے، ہم میں آپ سے یہ گفتگو کریوں کہ سے نو از ڈیفیکلٹ، بٹ ایٹ ٹائمز اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو آپ بہت سارے پرابلمس کے ساتھ بچ جاتے ہیں، بہت ساری جو چیزیں آپ کی طرف آنی ہوتی ہیں، آپ پر وہ مدعا گرنا ہوتا ہے آ کر، اس سے آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو یہ بہتر ہے کافی زیادہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ چلیں گے ہم ایک ٹرائی کے جانب، جو کہ نایاب کہہ رہے ہیں کہ جی پلیز ڈیڈیکیٹ کر دیں میری طرف سے سنا کو، تو جی ٹھیک ہے، لیں جی پھر سنا کو میں ٹریک ڈیڈیکیٹ کرنے جا رہی ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے ڈائل اپ پر 5:54 ہو گئے ہیں، ٹھیک 6 ہمیں نیوز بلٹن کی جانب بڑھنا ہے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے، سو اس کے بعد تھوڑا سا چھوٹا سا کمرشل ہوں گے، ایک دو وہ ہمارے پروگرام میں ایڈ ہوں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے آ کر، تو تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیپ لسننگ FM 101 اینڈ ہیئر دس ٹریک آئی ڈیڈیکیٹ ٹو سنا فرام نایاب۔ Alright, جی Enjoy this track, I'll be right back.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दिस इज FM 101।
0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। और बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं न्यूज बुलेटिन से ताजा तरीन सूरत हाल जानने के बाद। और कुछ छोटे छोटे से एक दो कमर्शियल्स थे उनको भी प्ले कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लिसनर्स ये कहते हैं कि आप जो है ना इतना बिजी हो जाती हैं कि आपको याद ही नहीं रहता कि हमसे बात भी करनी है। तो ऐसा नहीं है जी, मुझे बिल्कुल याद है कि मेरे लिसनर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उनसे बात करनी है। और मैं संडेज में आपसे ही बात करने के लिए आती हूँ और आपसे बातें सुनने के लिए भी है, कहते हैं बातें सुनाने के लिए बातें सुनने आती और कुछ सुनाने आती हूँ। एनीवेज जी, और आपके मैसेजेस की जाने बढ़ा जाए तो चार चार साथी पर हमारे साथ अलिशबा हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ आप ही, और मैं ग्रेजुएट की स्टूडेंट हूँ और मुझे आपके प्रोग्राम इस वक्त सुनना बड़ा अच्छा लगता है। हमारे पेपर्स जो हैं वो आजकल हो रहे हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक टू यू अलिशबा। और कहती हैं कि जी कोई सा ट्रैक मुझे रिक्वेस्ट करें, आप बड़े अच्छे अच्छे ट्रैक्स प्ले कर रही हैं। ओके, तो मैं फिर कोई और अपनी पसंद का ट्रैक आपको जो है ना वो डेडिकेट कर दूंगी अलिशबा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पढ़ाकू बच्चे हैं और उस पढ़ाई के दौरान आप मेरा प्रोग्राम सुन रही हैं और उसको पसंद कर रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ फेसबुक के मैसेज की जानी बढ़ा जाए तो मैं ज़रा रिफ्रेश तो कर लूँ, रिफ्रेश करूंगी तो जी सिस्टम जो है ना वो चीज़ें जो है वो मुझे लेटेस्ट जो आपके मैसेजेस है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये सिस्टम है थोड़ा सा आपको पता है लेट भी हो जाता है कभी कभी, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। और हम बात कर रहे हैं जी कि नो से नो इज़ अ वेरी यू नो डिफ़िकल्ट थिंग, बट इफ़ यू से नो देन द थिंग इज़ गोइंग टू वेरी स्मूथ, वेरी काम। बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में ना बेहतर हो जाती हैं क्योंकि आप अपने लिए वक्त निकालते हैं। जब आप हर वक्त दूसरे के लिए अवेलेबल रहेंगे ना तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट, ना सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपकी कहते हैं ना खुद एतमादी और खुद मुख्तारी ये जो आपकी है और इज़्ज़त नफ्स जो है, इन सारों की तो बात आप अलग-अलग रख दें। जो आपकी प्रेजेंस एक नज़र आ रही है ना सबको, आप फिज़िकली जो एक नज़र आ रहे हैं, आपकी वो पहचान भी ख़त्म होने लग जाएगी, आपका चेहरा डल होने लग जाएगा, आपकी सेहत इफ़ेक्ट होने लग जाएगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो आपकी लेट डाउन होने लग जाएंगी। और इसी के साथ जी मैसेजेस की जाने बढ़ा जाए तो हमारे साथ आयशा शहजादी हैं मौजूद, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहती क्या हाल है मैंने आपके, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आयशा। और कहती हैं जी कि मैं जुलेखा शहजादी लाहौर से बात कर रही हूँ, कैसी तबीयत है आपकी, अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ा एहसान है उसका। और एंड आई होप कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैर खैरियत से होंगी। कहती हैं जी मेरी तरफ से आपी रिमशा, आपी शाहमीम और आपी सादिया और फरी चुबुरजी से लाहौर से, कहते हैं अंकल शहजाद, अंकल अब्दुल अहमद फारूक आबाद से, और ये कहती हैं इन सबको ना सलाम और आरजे को भी सलाम। ठीक है जी, आपकी तरफ से सबको मैंने जो है ना सलाम वो पहुंचा दिया है, होपफुली कि उनकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम भी आप तक पहुंच गया। राइट, आयशा शहजादी कहती हैं इसके अलावा जी वेरी नाइस शो एंड वेरी नाइस टॉकिंग, और बिल्कुल जी आपकी समाज बड़ी खूबसूरत है आयशा, इसलिए आपको मेरे लफ्ज़ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और मेरी आवाज़ आपको बड़ी प्यारी लग रही है। देखिए हमारा सबसे पहला जो रिश्ता है ना आपसे, एक तो इंसानियत का, दूसरा आवाज़ का रिश्ता होता है। आवाज़ से हम किसी की पर्सनैलिटी, किसी की आँखें कैसी होंगी, कैसे बात करता होगा, इसके पेरेंट्स कैसी होगी, ये कैसे वेयरिंग करता होगा, अगर इसका वे ऑफ स्टाइल ऐसा है तो इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। उससे मेरा कभी कभी दिल चाहता है एक प्रोग्राम जो है ना वो इस भी रखूं कि आपने गेस कर रहे हैं कि जो इंसान आपसे बात कर रहा है उसकी पर्सनालिटी कैसी है, आप क्या समझते हैं कि वो कैसा दिखता होगा, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, उसकी वेयरिंग स्टाइल क्या होगा, या कुछ भी जो इस तरह से कुछ इंटरेस्टिंग इस तरह से रखूं। वेल मैंने अभी सिर्फ सोचा है, अगर आपका कोई ऐसा इरादा है कि मैं ऐसा प्रोग्राम या ऐसा कोई टॉपिक रखूं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिए www.facebook.com/FM101 लाहौर के पेज पे, या चार चार साथ ही आप मैसेज करें। और अगर आप ऑफ एयर कॉल करना चाहते हैं तो 111111 पे आप कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं चलूंगी इस खूबसूरत से ट्रैक के जानिब, और मैंने प्ले करना है जी आपके लिए, के लिए, के लिए, एक्चुअली मैंने डेडिकेट भी करना है और खुद भी बड़ा अच्छा ट्रैक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वैसे ये। रंगिया मैं रंगिया, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, इश्क
1: चिरंगिया
0: Alright, you enjoyed this beautiful track. I'll be right back. Keep listening. FM 101.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: This is FM 101।

0: ऑलराइट जी, जे तू गाड़ियां च फिरनी है हवा विच उड़दा मेरा प्लेन, और वो कहते हैं कि इतनी बात नहीं है, लड़का कह रहा है अगर तुम गाड़ियों में फिरती हो ना तो फिरो, तो मेरे तो चॉपर और प्लेन्स और पता नहीं क्या क्या उड़ते हैं, तो इट्स ओके जी। और ये तो खैर एक ट्रैक की बात है, तो ट्रैक तक ही महदूद है, इसके अलावा हम पर्सनल नहीं हो रहे किसी के साथ भी। एनीवेज हमारे साथ ऑफ एयर में मौजूद थे नुमान, और नुमान बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। उन्होंने यही कहा कि आपका टॉपिक जो है ना, उस हवाले से मैं यही कहूँगा कि नो आप जो है वो तब कहें जब आप काम का 100% नहीं प्रोवाइड कर सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी के साथ आप जैसे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, आप समटाइम्स आप हामी भर लेते हैं कि ठीक है यार हम चलते हैं, या फलां जगह पर किसी काम के लिए आपने जाना है अपने दोस्त के साथ, बहन भाई या माँ बाप किसी के साथ भी अगर आपने जाना है आप चले जाते हैं, लेकिन वो क्या है कि आपकी टिकटिकी, आपका जहन, आपका ब्रेन जो है ना वो पीछे फ्लैशबैक में उसी काम के लिए सोच रहा है, उसी काम के बारे में। समटाइम देखा नहीं लोग शादी की महफिल में आए होते हैं या कहीं और किसी पार्टी में या किसी भी इवेंट के ऊपर आए होते हैं, तो लोग कहते हैं यार मैं ना फ़लाँ चीज़ सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो ऐसा काम है वो ऐसा क्यों हुआ, या मैं जो घर में चीज़ फ़लाँ रख के आया हूँ उसको ऐसे ऐसे करना है, अब मेरा प्रोजेक्ट ऐसे है, अब मैंने इसको ऐसे लेना है, वो उसी चीज़ के बारे में जो उनके जहन जो पीछे लगा होता है ना उस बारे में वो सोच रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है और वो अपना 100% नहीं दे पाते। बिल्कुल नुमान में आपकी बात से इतफाक़ करती हूँ कि वाकई में ऐसा होता है कि आप समटाइम अपना 100% नहीं दे पाते, तो इसलिए उस टाइम पे नो कहना जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है, इंस्टेड कि आप हाँ कहकर अगले का भी मजाक किरकिरा कर दें, क्यों भाई। और राइट, इसी के साथ आपके मैसेजेस जो फेसबुक पे आए उनकी जाने बढ़ा जाए, तो कमल नवाज हमारे साथ हैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कमल, क्या हाल अहवाल हैं आपके, ठीक ठाक हैं, कहती हैं कैसी हैं आप आरजे महविश। मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, कहती नाइस ज़बरदस्त शो। थैंक यू कमल, बहुत शुक्रिया। जैसे आप कमल है ना, इस तरह आप जो बात करती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और है जी रजा चौधरी हमारे साथ आए, कहते हैं आज के मौजू पर मैं ये कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में या अपने काम को अच्छे तरीके से जब हम समझेंगे या करने की सलाहियत रखेंगे ना, तो जो लफ्ज़ सॉरी है ना, तो ये ज़िंदगी में नहीं आएगा। ओके ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर इंसान अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकता है खुद, तो उसको सॉरी या नो कहने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, आपको हेल्प लेने की जो एक ज़रूरत है वो भी पेश नहीं आएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं राइट। तो नो कहना या सॉरी की नौबत आएगी ही नहीं। आई थिंक ये आई मे मेक माई पॉइंट राइट। और राइट रजा चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो डिस्कशन हमारे साथ किए हैं, थैंक यू सो वेरी मच। और इसके साथ साथ सज्जाद अली लाडला आ गए हैं हमारे साथ, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, सद बिस्मिल्लाह जी आया नू, वेलकम टू द शो, वेलकम टू यू सज्जाद अली लाडला, थैंक यू सो वेरी मच, आप ठीक होंगी। बिल्कुल जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है। और तमाम सुनती समातों को सलाम, ऑल पाकिस्तान पंजाब एंड पाक आर्मी, उन्होंने सबको सल्यूट और सबको सलाम किया जी, उन सब की तरफ से वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद अली आपको मैं करती हूँ। और राइट जी, रजा चौधरी ने एक शिकायत की है कि आप कॉल नहीं लेती हैं, आप कॉल प्लीज़ लिया करें। अच्छा ठीक है, वो कहते हैं जी उन्होंने फेसबुक पे मैसेज भी किया है कि लोग चांद पे पहुंच गए हैं और आप अभी वही रूटीन शो कर रही हैं, ओ माय गॉड, आप कॉल क्यों नहीं लेती हैं। ज़रूर जी, मैं अब कॉल भी लूँगी, मौजू पे बात करना मैं चाहता हूँ, कॉल भी पिक किया करें। ज़रूर रजा चौधरी, आपने देखें शिकायत किया और मैंने इसको तहे दिल से एक्सेप्ट किया है, बजाय ये कि मैं कहूँ नहीं जी वो मेरी मर्ज़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। आयशा शहजादियाँ कहती हैं आप ही एक रिक्वेस्ट है, एक सॉन्ग प्ले करना है, हो सकता है तो बताओ दें। बिल्कुल, लेकिन ये जो आपने ट्रैक लिखा है ना आयशा शहजादी, ये वाला नहीं प्ले हो सकता है, इसके अलावा अगर आप कोई और बता देंगे पाकिस्तानी सॉन्ग तो मैं ज़रूर प्ले कर दूंगी, ठीक है। और आई जी सी के साथ साथ 4471 पे मैसेजेस की भरमार है। और हमारे साथ हैं शकील, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी आप, ठीक ठाक हो अल्लाह का शुक्र। कहते हैं टॉपिक बड़ा अच्छा है आपका कि नो जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है किसी को कहना, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी ताकत की ज़रूरत होती है, जो इनसाइड आपके अंदर एक खुद एतमादी होती है ना, वो ये चीज़ लेकर आती है। बिल्कुल शकील, मैं भी उस वक्त से यही कहने की कोशिश कर रही, लेकिन एक अदद जो कमर्शल है उसका वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम में, तो हम उसको प्ले करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद हम वापस आएँगे। तो आपने कहीं नहीं भागना, कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, और क्योंकि इस कमर्शियल के बाद हम वापस आ रहे हैं। सो कीप लिसनिंग FM 101।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: I love FM 101। نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے. اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے. نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے، لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں. نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں. نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی

0: This is FM 101.
1: और राइट जी, दिस इज़ एफ़ एम 101 और आप सुन रहे हैं FM 101, और बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ हैं मौजूद. और मैं ये बात कर रही हूँ कि आपको नो कहना जो है वो सीख लेना चाहिए, क्योंकि हम बचपन से हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप यस कहना कहें. आपकी इज्जत जो है वो इसी में है कि आप हाँ कह दें, और हाँ कहने वाले की तारीफ़ ज़्यादा होती है, हाँ कहने वाले की इज्जत ज़्यादा होती है. जो वॉलंटियर करते हैं उसकी इज्जत ज़्यादा होती है, जो हर वक्त अपने आप को अवेलेबल करते हैं उसकी इज्जत ज़्यादा होती है. अब लेकिन ये थोड़े से पैटर्न जो है वो चेंज हो गए हैं कि आप अपने आप की अवेलेबिलिटी जो है वो ज़रा कम कर दें. हर वक्त के लिए यस कहना जो है वो अच्छा नहीं है. मैं ये नहीं कह रही कि आप थ्रू आउट द वे नो कहते रहें, नहीं मैं ऐसा भी नहीं कह रही आपसे. इतने समझदार तो आप खुद भी हैं जनाब, और अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर दें. बहुत सारे आजकल तो वैसे छोटे बच्चे कहते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हम ऐसे कहना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं अपनी लाइफ में. तो मैंने अक्सर जब मैं बाहर आउटसाइड भी जाती हूँ ना घूमने के लिए, या फैमिली के साथ हम लोग जाते हैं, तो मैं अक्सर देख रही हूँ माँ बाप ना बड़ा फोकस कर रहे होते हैं बच्चे को. छोटा सा बच्चा होता है कोई 5-6 साल, 4-5 साल का, तो उसको कह रहे होते नहीं बेटा आप ये करो, वो कहता नहीं भी मैंने ये नहीं करना. उस एज में भी, यानी 4-5 ईयर्स का जो एक बच्चा है, बहुत छोटा अभी, उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है आगे. मैं इवन ये देख रही होती कि उसका एक अपना डिसीजन है. जब 4 से 5 साल का बच्चा एक अपना डिसीजन ले रहा है, जो खेल भी रहा है, जो खा भी रहा है, जो खुद एक एंटिटी है, तो वो अपने आप में एक डिसीजन पावर रखता है. तो जब वो डिसीजन ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते. तो वो मैं बल्कि उसको एक्सपीरियंस कर रही थी, देख रही थी, मैं ऑब्जर्व कर रही थी, तो वो उसके पेरेंट्स उसे कह रहे नहीं तुम ये कर लो, या तुम ये खा लो, या तुम ऐसे कर लो. तो वो बच्चा कह रहा नहीं मैंने ये नहीं करना. अच्छा तुम ये ब्लू जो है ये टॉय ले लो, येलो रहने दो, इस तरह का कुछ उसको कह रहे थे. तो वो कह रहे थे नहीं आई वॉन्ट येलो नॉट ब्लू. जब एक कलर सिलेक्शन में वो बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, नहीं सुन रहा, वो अपने डिसीजन को आप पे इम्पोज कर रहा है कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप क्योंकि मैंने यूज़ करनी है चीज़. तो जब ये एक क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है ना, तो फिर बहुत सारी और चीज़ों में भी आप डोमिनेंसी जो है ना, डोमिनेंट होने को इम्पॉर्टेंस कहते हैं. आप कहते हैं नहीं जी मेरा डिसीजन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैं. और आजकल के बच्चे यही कह रहे हैं. 2026 के जो बच्चे हैं ना, 2026 के, वो बहुत मुख्तलिफ हैं. आप 2-3 साल ही पीछे चले जाएँ, उन बच्चों से बहुत डिफरेंट हैं. तो इसलिए ये जनरेशन गैप भी जो है ना, ये हमारे अंदर एक तरह की नई सोच पैदा करता है. और नई सोच बिल्कुल होनी चाहिए, आप नए तकाज़ों के मुताबिक चलने की कोशिश करें. लेकिन बहुत ज़्यादा आगे जब आप चीज़ को पीक पे ले जाते हैं ना कि नहीं बस ये इस पे तो हमने बात ही ख़त्म कर देनी, इससे तो ज़्यादा हमारी बात ही नहीं है, हमारा वेयरिंग बिल्कुल डिफरेंट है, जो हमें बताया गया उससे बिल्कुल डिफरेंट, ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि बहुत वो होती. आप अपने किरदार से चीज़ों को बदल सकते हैं, ना कि अपनी वेयरिंग से और अपने बोलने से. वो किसी ने पूछा ना हज़रत अली से कि आप मुझे ये बताएं कि मैं लोगों को अच्छी बातें बताना चाहता हूँ, अच्छी चीज़ें बताना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा कौन सा तरीका इख्तियार करूँ कि जिससे लोग मेरी बात भी सुने और मेरी तरफ रागिब हों और मैं उन्हें अच्छाई की तालीम दूँ. तो हज़रत अली ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया. वो कहते हैं कि ना तुम्हें इसमें किसी कलम उठाने की ज़रूरत है, ना तुम्हें किसी छड़ी को उठाने की ज़रूरत है, ना तुम्हें बोलने की ज़रूरत है, चीख चीख कर बताने की ज़रूरत है. अपने किरदार को इतना बुलंद कर लो कि लोग तुमसे आकर मिलें, वो तुमसे पूछें, वो तुमसे हिकमत की बातें जानने की कोशिश करें, वो तुम्हारे इर्द गिर्द, जैसे फूल के इर्द गिर्द शहद की मक्खियाँ होती हैं ना, बिल्कुल इसी तरह वो तुम्हारे इर्द गिर्द फिरते रहें, तुमसे पूछते रहें. तो वो बड़ा हैरान हुआ. तो सिंपल इज़ दैट कि आप जब किसी को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं ना कि अगला हमारी वेयरिंग से शायद इंस्पायर हो जाएगा, हमारे मेकअप से इंस्पायर हो जाएगा, या फिर हमारी बड़ी सी गाड़ी से इंस्पायर हो जाएगा, या हमारे घरों से इंस्पायर हो जाएगा, वो वक्त ही होते हैं, वो सिर्फ एक टेम्परेरी चीज़ें हैं जो कि आपको इस लाइफ में बस ज़रूरत है, ठीक है आपने कर लिया, ओके. लॉन्ग लास्टिंग जो है ना, वो आपका कैरेक्टर है कि आपने अपने किरदार को किस तरह डेवलप किया है, आपने कितना इम्पोर्टेंट इसको बनाया. हर वक्त आपने अगर यस यस कह दिया तो भी, और हर वक्त आपने नो कहना शुरू कर दिया तो भी, आपके जो बिहेवियरल चेंजेस हैं लोगों के साथ और आपके साथ इंटरेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे, यकीन करें. और राइट जी, इसी के साथ हसन एंड रोशन का खूबसूरत सा ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं तमाम लिसनर्स को. इसको एंजॉय कीजिए हमारे साथ. इसके बाद पलटते हैं वापस. 111-111 इज द लैंडलाइन नंबर. 447 एक बार आप कर रहे हैं मैसेज. एंड www.facebook.com/FM101 लाहौर.

0: सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: This is FM 101।
2: ऑल राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। और बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ इस वक्त कर रहे हैं बारिश से पेट और उनकी पार्टिसिपेशन को भी आज करते चलेंगे, लेकिन मुझे आपको पता है थोड़ा सा सिस्टम को रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए तो हमारे साथ उसामा अजीम है। कहते हैं जी, शरीफ लोग या जो ज़्यादा सोशल नहीं होना चाहते या नहीं होते, उनसे नो नहीं बोला जाता, उनसे ना नहीं कहा जाता, इनकार नहीं किया जाता, जो शरीफ लोग होते हैं या जो ज़्यादा सोशल नहीं होते। वेल उसामा, आप तो ये बात छोड़ दें कि शरीफ वाली कोई कॉन्सेप्ट है, शरीफ होते हैं, ज़रूर लोग होते हैं और होना भी चाहिए शरीफ, लेकिन शरीफ एक और चीज़ है। जैसे शरीफ और कमज़ोर होने में ना बहुत फ़र्क होता है, यानी जो ज़्यादा सोशलाइज नहीं होती, मैं उनके हवाले से बात करूँगी कि शरीफ होना चाहिए इंसान को, लेकिन किसी को बिल्कुल अपना आप बिल्कुल आप अगर किसी के पाँव में रख देंगे वो आपको कुचल के चला जाए तो ये भी तो सही नहीं है। शरीफ होना और चीज़ होती है कि आप अपनी हद में रहते हैं। देखिए, जो शरीफ होते हैं ना वो लोग लिमिटेड होते हैं, वो हर एक के लिए अवेलेबल नहीं होते, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, आप शरीफ हैं लेकिन आप कमज़ोर नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं, आपके पास एक इज़्ज़त नफ्स है, आपके पास खुद एतमादी है, आपके पास सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, आपको वो चीज़ें कमज़ोर नहीं होने देती। शरीफ होना बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि शरीफ जो है ना वो बेचारे शायद सोशलाइज नहीं होते या बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, ऐसा नहीं है, शरीफ ज़रूर होते हैं इंसान, लेकिन वही बात आ जाती है ना, आप नो कहने की बजाय अगर आप नो भी नहीं कह सकते तो आप क्वाइट रहें, आपके नहीं जी सॉरी नो ना कहें आप, ठीक है, लेकिन मदद ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी के लिए अवेलेबिलिटी ना शो करें अपनी, अगर किसी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई बहुत परेशान है तो आपका नहीं जी मेरा तो काम बड़ा ज़रूरी है मैं नहीं कर सकता, अगर आपके पास थोड़ी सी भी गुंजाइश है ना 0.1% भी, तो ज़रूर उसका काम कर दें। अगर वो बहुत ज़्यादा स्वेयर किसी प्रॉब्लम में है तो आप उसका ज़रूर काम करें, मदद ज़रूर करें उसकी, लेकिन ख़ुद को ना मिटाएं किसी के आगे। आप बिल्कुल 110% आप किसी के आगे बिल्कुल अवेलेबल कहते ना, हाज़िर कर देना अपने आप को कि नहीं जी ये देखें मैं अपना ज़रूरी काम छोड़कर, अपना इतना टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट काम छोड़कर आपके लिए जो ना अवेलेबल हूँ, तो ये चीज़ लोग आपकी कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो कभी भी नहीं आपको मानेंगे, वो कहेंगे ठीक है इसका मतलब इसके काम इतना जरूरी नहीं था, हम इंपॉर्टेंट थे, हमारे लिए यह हाजिर हो गया। आप अपने ना हमेशा हमें अपने दिमाग को फोकस करना पड़ता है, हमें उसको समझाना पड़ता है। मैं हमेशा प्रोग्राम्स में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये बात की है कि इंसान का जो दिमाग होता है ना वो मंकी की तरह होता है, वो बंदर की तरह होता है, वो हर वक्त उछलता रहता है, वो कभी भी फोकस नहीं होता, हमें उसको फोकस्ड करना पड़ता है। और जब हम किसी चीज़ पर अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग करते हैं ना, जिस वक्त हम उसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, हर चीज़ जो है वो हमें एज इट इज़ नहीं मिल जाती, फ़िल्टर होकर मिलती है। तो इसी तरह अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग जो है ना वो हमें खुद करनी पड़ती है उसामा। और मैं यही कहूँगी कि जो शरीफ लोग होते हैं वो ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होते हैं, वो ये नहीं कहते ठीक है जी मैं करूँगा, मदद ज़रूर करें लेकिन अपनी हस्ती को ना मिटाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे ना लगाएं। आप कमज़ोर नहीं है, शरीफ ज़रूर है लेकिन कमज़ोर नहीं है, तो वीक तो कोई भी नहीं होता। परवरदिगार ने जिसको भी खल्क किया, दुनिया में जितनी भी मखलूक है, इंसानों समेत, जो खला में है, जो हवा में है, जो समंदर के अंदर है, जो पानी में है, हर जगह पे उसकी, हर बंदे की, हर एक स्पीशीज़ की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो चाहे देखें मुर्गी है, उसके बच्चे हैं या कोई भी है, वो अपने बच्चों को भी बड़ा बचा बचा के रखेगी, चील से, कवों से और दूसरे लोगों से। तो जिस तरह उस मुर्गी जैसे कि जानवरों को ये सेंस नहीं होती, लेकिन उनमें भी ये चीज़ अल्लाह ताला ने रखी हुई है। तो इसी वजह से आप शरीफ ज़रूर हैं, मैं शराफत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कमज़ोर होने की बात कर रही हूँ। कमज़ोर लोग जो होते हैं ना वो नहीं कह सकते आप कमज़ोर नहीं हैं, आप स्ट्रांग हैं, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट है। सो अपने आप को पहचाने कि अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी आपको एक बार दी है, इसमें यू टर्न कोई नहीं है। सोशल ना हो कोई बात नहीं, मैं भी ज़्यादा सोशल नहीं हूँ मैं बस थोड़ी थोड़ी बातें करती हूँ। आयशा शहजादी हमारे साथ हैं और बड़ा प्यारा प्यारा इन्होंने मुझे भेजा है, छोटा सा हार्ट उसने पकड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच आयशा, बड़ा अच्छा लगा मुझे, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने एक और ट्रैक की रिक्वेस्ट की, आशा अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना अपनी पसंद का कोई ट्रैक आपको डेडिकेट कर दूँ। और राइट जी, और इसी के साथ मेरा दिल चाह रहा है कि मैं क्यों प्ले करूँ,

और जी, और एक ट्रैक जो कि मैं रिक्वेस्ट ये की है मुझे जी नईम ने कहा है मेरे दोस्त अली रज़ा जो हैं उनको कोई भी ट्रैक जो है वो रिक्वेस्टेड ट्रैक वो प्ले कर दें, तो मैं अपनी मर्ज़ी से इस ट्रैक को नईम आपकी तरफ से अली रज़ा को डेडिकेट करती हूँ, और जितने भी लिसनर सुन रहे हैं, आयशा शहजादी सुन रही हैं, उनको भी डेडिकेट कर रही हूँ। कानू कर दे हो। Enjoy this track, I'll be right back.

0: This is FM 101.
1: Alright जी, वेलकम बैक. और हमारे साथ है जी नईम, और नईम ने बड़े ही खूबसूरत सा ट्रैक डेडिकेट किया. थैंक यू सो मच नईम, अल्लाह ब्लेस यू. और इनके दोस्त अली रज़ा को मैंने जो है वो ट्रैक डेडिकेट कर दिया, एंड होपफुली आपको पसंद भी आया होगा. और बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ हैं मौजूद. सजाद अली लाडला ने बड़ी ही अजीब सी बात लिखी है फेसबुक में, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. कहते हैं मैंने आपको लास्ट टाइम अक्टूबर 2024 में सुना था, बस थोड़ा सा. उसके बाद कभी आप आई थी, कभी मैंने मिस कर दिया था. और कहते हैं उसके बाद मैंने पोस्ट भी काफ़ी देखी आपकी, लेकिन वो जब मैं आप जा चुकी होती थी, जब मैं पोस्ट आपकी देखता था तो बहुत अच्छा आप बोलती हैं माशाल्लाह, अच्छी गुफ्तगू और बहुत अच्छी तरीके से आप बात करती हैं कि बात सुनने को दिल चाहता है. तो अल्लाह आपके नसीब बहुत अच्छे करे. थैंक यू सो मच सजाद अली. और आपने वाकई इतनी पुरानी बात मुझसे की कि 2024 अक्टूबर से आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन अब जब आप कभी मिस कर देते हैं, कभी आप लेट हो जाते हैं, या कभी आप देर से देखते हैं, लेकिन मैं प्रोग्राम हर संडे को 5 to 7 ही करती हूँ. अभी आजकल जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, उन्होंने ज़ुबैर बशीर साहब, उन्होंने मेरा स्केड्यूल ही संडेज़ में 5 to 7 का रखा हुआ है. इसमें मेरी कोई वो नहीं है, ये हमारे प्रोड्यूसर्स जो है ना, हमारी मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हमने कौन सा प्रोग्राम करना है और किस टाइम पे कौन सा चीज जो प्रोग्राम है हमारी आवाज़ और हमारे लहजे के मुताबिक बेस्ट सूट हो जाए. तो ये सारी कुछ हमारी मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं, हमारा कुछ कोई हाथ नहीं होता हमारा. मलिक वसीम ऐवान मुंडा सियालकोटिया कहते हैं जी बहुत उमदा माशाल्लाह, थैंक यू सो मच. रजा चौधरी कहते हैं आप ही लगता है आज मेरी कॉल नहीं लगनी. ओए होए होए यार, नहीं देखे मैं कॉल्स बहुत सारी उठा रही हूँ, अगर आपकी नहीं लग रही तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती. लेकिन मेरा ख्याल है कोशिश करना छोड़ देते हैं कॉल नहीं मिलने, चलो खुश रहें. नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, कोशिश तो करते रहना चाहिए. आपको जिस वक्त ये लगता है ना कि अब आपकी कोशिश बेकार है, अब नहीं मैंने करनी, वो उसी टाइम पे एक छोटा सा जैक जो होता है इंसान का लगता है, बस उस वक्त कामयाबी आपको मिल जाती है, दैट्स इट. हमादुल्ला मलिक खेले कहते हैं ज़िंदगी में कभी भी किसी मुखलिस इंसान को आजमाना नहीं चाहिए, क्योंकि मुखलिस लोग इम्तिहान के लिए नहीं होते, ये तो सिर्फ संभाल के रखने के लिए होते हैं. बिल्कुल आपने सही बात किया हमादुल्ला मलिक खेल. और पता है जब आप वाकई जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं ना, या जो लोग आपकी बात को समझते हैं, या जो आपकी कंडीशन को समझ रहे होते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं या किसी काम में फंसे हुए हैं, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट आप प्रोजेक्ट में किसी की या किसी चीज़ की प्लानिंग में, या कोई भी काम आप जो है बहुत, या किसी सब्जेक्ट की तैयारी करें या पेपर की या वट एवर जो भी काम आप कर रहे हैं, जो लोग आपसे वाकई मोहब्बत करते हैं ना, वो आपके इनकार को मुस्बत समझेंगे. वो कभी भी ये नहीं कहेंगे लो ये तो इसने मुझे मुंह पे इनकार कर दिया, इसको तो मैनर्स ही नहीं है, इसने तो पता नहीं कहाँ पे पढ़ा है, और इस तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारे सेंटेंसेस सुनने को मिलेंगे. लेकिन ये है कि जो वाकई में आपकी कदर को समझते होंगे ना, कि अगर यार वो बंदा अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि हम उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर दें और उसके ऊपर उसको डिसग्रेस करना शुरू कर दें, उसको बताना शुरू कर दें कि भाई ये तो है ही ऐसा, ये तो सदा का ऐसा है, इसने तो कभी हमारा काम किया ही नहीं. वो एक इनकार जो है ना, समटाइम्स आपकी बात में आपको समझ रही हूँ सारों को जो आप कहना चाह रहे हैं, कि एक इनकार जो होता है ना समटाइम आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल डी वैल्यू कर देता है. लेकिन यकीन करें वो डी वैल्यू नहीं होती, सम इन सम वे वो आपकी जो पर्सनैलिटी होती है उसी को इन्हांस करने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हर वक्त की अवेलेबिलिटी जो होती है ना, वो आपको लोगों को यही दिमाग में बिठा देती है कि ये बंदा अवेलेबल है, इसको जाके जो है ना पूछते हैं या इससे बात करते हैं. लेकिन जो महज सिर्फ आपसे काम निकलवाना चाहते हैं, जो लोग सिर्फ आपको टाइम टू टाइम यूज़ करना चाहते हैं, वो सिर्फ आपसे नाराज़ भी होंगे बिला वजह का, और आपसे ऐसे उखड़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी इंसल्ट करना शुरू कर देंगे, आप महफिल में मजाक मजाक में आपकी इंसल्ट करेंगे. ऐसे लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्डली शट अप कॉल दें, उनके साथ सीरियस रहें बिल्कुल, कि कोई ज़रूरत नहीं. ऐसे लोग जो ज़िंदगी से निकल जाए, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है. जिनको इम्पॉर्टेंस का नहीं पता कि हर इंसान की एक अपनी कीमत होती है, और हर इंसान की कीमत उसके उसके अपने हाथ में होती है कि वो अपना कितनी अपनी कितनी कीमत लगवाता है. और रही जी फरहान इकबाल कहते हैं माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा उन्होंने हार्ट भी भेजा, थैंक यू सो मच. फरहान इकबाल कहते हैं बहुत अच्छा शो और टॉपिक भी बहुत अच्छा है. कवल नाज है कहती हैं शमसी लिसनर ग्रुप वालों की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम उनकी तरफ से. और सजाद अली कहते हैं यूँ तो मेरे खुलूस की कीमत भी कम ना थी, कुछ कम शनास लोग थे जो दौलत पर मर गए. ओए होए होए कहाँ से लाते हैं इतनी शेर व शायरी आप. एनीवेज इसी के साथ प्ले किया जाएगा एक और ट्रैक. और अगर डायल अप की जानिब देखा जाए तो 6:45 हो चुके हैं. अगर किसी ने अपना डायल अप ठीक करना है तो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक अपना डायल अप ठीक कर सकता है. 6:45 हो चुके हैं 6:45 PM ऑन माई डायल अप राइट नाउ. और इसी के साथ एक ट्रैक की जानिब मैं बढ़ रही हूँ. And track is about Naseebo Lal and Umair Jaswal. So enjoy this track. I'll be right back. I'm listening FM 101.

ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। और अब आप प्रोग्राम में बिल्कुल जी ट्रैक सुन रहे हैं, सासू मांग के कुकड़ी ओ नसीबुल आलम उमर जायसवाल जो है वो साथ साथ गा रहे हैं कुक स्टूडियो में, और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक आप लोगों के लिए ऑनर किया जा चुका। और मेरे साथ ही इस वक्त खूबसूरत थी उर्फ अमारा और वो आयमा सॉरी, और वो बहुत तारीफ करी थी प्रोग्राम की, और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि आपकी आवाज़ जो है ना वो आरजे ज़ैनब से भी बड़ी मिलती है। तो जी मिलती है, वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बिल्कुल वो कहती हैं जी आप उनको भी मेरी तरफ से कोई ट्रैक जो है ना वो डेडिकेट कीजिए, जरूर करूंगी हमारा। थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ सज्जाद अली लाडला कहते हैं अपनी जिंदगी में हर शख्स को एक खास कुर्सी दें, एक अच्छी जगह पर बिठाएं, झुके, अहमियत दें, इज्जत भी दें, फिर इत्मीनान से मुशाहिदा करें कि वो शख्स अपना तवाजन खोने लगा है। अगर ऐसा है तो इसे इस जगह पर इससे इसकी जगह ना छीने, इसे वहीं पर बैठा रहने दें मगर खुद खामोशी से वहां से हिजरत कर जाए। जबरदस्त सज्जाद अली, आपने बिल्कुल दरिया को क्रूजे में बंद किया कि हर इंसान की एक जगह होती है, चाहे अच्छी या बुरी या व्हाटएवर, तो आप उसको जगह ज़रूर दें। अगर वो आप की ज़िंदगी में हलचल मचा दे या आपको वो रिस्पेक्ट ना दे जो आपने उसको दी है, तो आप इज़्ज़त से उससे तो कुर्सी ना छीने आप, लेकिन आप ख़ुद वहाँ से हिजरत कर जाएं। तो याद रखें, अगर किसी को आपकी दी हुई इज़्ज़त, मोहब्बत और आपका दिया हुआ कोई भी मकाम जो आपने उसको दिया वो रास नहीं आता, तो अपना वक़ार और ज़र्फ ना खोएं। वो कहते हैं ना ज़र्फ और सबसे बड़ा होना चाहिए, और सारों का ज़र्फ नहीं, वो आला ज़र्फ नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। और राइट जी, इसी के साथ कमल नवाज हैं, कहती हैं आपके टॉपिक पे मैं ये कहूँगी कि इतने कड़वे ना बनो कि कोई आपसे नफरत करे, और इतने मीठे भी ना बनो कि हर कोई आपको आसानी से खा जाए, हजम कर जाए। ठीक है। और जी, और इसी के साथ साथ जो रुखसत का वक्त है वो करीब आन पहुंच रहा है, 6:50 हो गए हैं बिल्कुल, और 10 रह गए मेरे पास 7, मुझे आपसे रुखसत लेनी है, क्या करूँ। बड़ा मुश्किल होता है ना किसी को गुड बाय कहना, गुड बाय इज़ नॉट ईजी टू से। एनी वेज जी, 4-4 के मैसेजेस की जाने बढ़ा जाए तो हमारे से पास हैं जी, माई नेम इज़ ज़ारा, आई एम फ्राम लाहौर, हाउ आर यू। अल्लाह का शुक्र जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माई डियर स्वीट, आप ही। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप

मैसेजेस भी बहुत सारे आपके जमा हो गए हैं फिर उससे। मेरे पास है जी कुछ इस तरह से, और मेरे पास क्या है, ये है मनवारी बाय अली नूर। इंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, एंड आई होप कि ये लास्ट ट्रैक है प्रोग्राम में, और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इस ट्रैक के उस पर आकर आपसे मुलाकात करते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि मैंने कंक्लूजन की तरफ बढ़ना है और आपसे बाय बाय कहना है।

राइट लिसनर्स, और इसी के साथ साथ 6:55 हो चुके हैं और 7 बजे तक आपका मेरा था साथ. और बिल्कुल जी, साथ को आपने खूबसूरत बनाया आपके पैगामात ने. और यकीन करें, मुझे सिर्फ ये कहना नहीं इंपॉर्टेंट होता कि आपके पैगामात, आपके जो मैसेजेस हैं वो वाकई वैल्यूड मैसेजेस हैं फॉर मी एज वेल. तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. रजा चौधरी का मैसेज शामिल करते हैं फेसबुक पर. कहते हैं, जो शख्स अपने पास मौजूद चीज़ों पर राज़ी नहीं होता, वो उस वक्त भी खुश नहीं होगा जब उसे अपनी हर ख्वाहिश मिल जाए, क्योंकि रजामंदी और कनात एक दूसरे से जुदा नहीं होते. ओ माई गॉड, दैट इज़ टू मच. और बिल्कुल रजा चौधरी, आपने बहुत बड़ी बात की और बड़ी आसानी से कर दी है. मैं जब बड़ी बड़ी बातें करती हूँ ना, पहले मैं बहुत दफ़ा सोचती हूँ और फिर उनका तवाज़ुन देखती हूँ, और फिर मैं आपके साथ यहाँ पे जितने भी लिसनर्स हैं ना, उनके साथ उन बातों को शेयर करती हूँ. ऑलराइट जी, इसी के साथ साथ जितने भी लिसनर्स आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू रहे और पार्टिसिपेट करते रहे, मुझे दिल से, मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ. और दिल से यही दुआ है कि आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, उनकी हर सुबह जो है वो खुशगवार हो, और हर सुबह जो खुशगवार है उसका अंजाम बखैर हो. अल्लाह ताला आप सब लोगों को, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उनको अपनी अमान में रखने, अपनी हिफाजत में रखे. अल्लाह ताला आपकी दिली मुरादों को पूरा करे, और बहुत सारा ख्याल रखें उन लोगों का जो आपके साथ आपका ख्याल रखते हैं, जो आपके बगैर हंसना भी जो है ना मुनासिब नहीं समझते. वो कहते नहीं जी, हमारा दोस्त होगा या हमारी बहन होगी या हमारा भाई साथ बैठा होगा या हमारा फ़लाँ रिश्ता हमारे साथ होगा, तो हमें खुशी सेलिब्रेट करने का या जो भी डिसीजंस हैं उनमें हमारे साथ ये बंदा बैठा होगा तो हमें अच्छा लगेगा. तो ऐसे रिश्तों की जो कदर है वो ज़रूर करें. ज़ारा का लास्ट मैसेज शामिल करती हूँ. कहती हूँ जी, शो गुड है और प्रोग्राम बहुत अच्छा है हमेशा की तरह से. ज़ारा, थैंक यू सो मच.

हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे और सलामत रखे। इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटते रहेंगे, एहसास करेंगे, प्यार करेंगे लोगों से, और अपनी इज्जत की खातिर अपनी इज्जत को अपनी कमजोरी ना बनने दें। आप शरीफ ज़रूर हैं, आप वो कहते हैं कि आप अपनी लिमिट्स को खुद डिफाइन करें, लोगों को इजाज़त ना दें कि वो आपकी लिमिट्स को डिफाइन करें, आप अपनी खुदबंदी खुद करें, बचाइए कि आप लोगों को डिस्टर्ब करें या उनसे पूछें या कुछ भी। तो अब सलामत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और दुआओं में याद रखिएगा, और मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे 5 to 7 इवनिंग संडे स्पेशल शो में। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, साइनिंग आउट आरजे महविश जैदी, अल्लाह हाफिज़।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ।
2: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ़ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
3: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: जे तू लब दा वफा फिर दा नी लबनी।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: This is FM 101.1.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सरोर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों के मैसेजेस का। नूर हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह ताला का बहुत करम है। आई थिंक

101 टाइम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 10:24 हुआ साथ हैं सामईन और हम रीजनल लैंग्वेज के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में बोले जाने काफ़ी सारी वॉइसेस जुबानें हैं वाह जी बड़ी जुबानें हैं लेकिन जो पंजाबी है उसकी भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं उसके भी बहुत सारे एक्सेंट्स हैं हर इलाके की अपनी ही एक वॉइस ऑन है उसके वर्ड्स जो हैं वो भी अलग अलग प्रनाउंस किए जाते हैं तुसी मेरा गल करनी सिर्फ पंजाबी दे विच वैसे उर्दू च गल्लां बातां कर रहे हैं

जी, अब से कुछ देर बाद हमें बढ़ना है एक शॉर्ट टाइम चेक ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे आप लोगों के लाइव कॉल्स के साथ और गपशप लगाएंगे एक्सक्लूसिवली लाइव आप लोगों के साथ और पंजाबी में गपशप लगाएंगे। आज देखते हैं कि किसकी पंजाबी ज्यादा अच्छी है। क्या कमर्शियल्स नहीं? अच्छा, वैसे मुझे जीशान नासिर के शोज बताइए कितने हैं और कौन कौन से दिन में होते हैं, लोग सुनना चाहते हैं।

वैसे टाइम चेक वैसे बता देते हैं ना, कमर्शियल तो है नहीं है। ओके सामीन, 10:00 हुआ से आते हैं, 30 मिनट 101 टाइम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम।

जी, और काफी सारी जो है वो तैयारियां कर ली गई हैं। लोग जो हैं वो इस वक्त मंडियों को जो है वो रुख कर रहे हैं।

थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और घर वाले 10 रुपए का एतबार नहीं करते दोस्त ने। अच्छा तुम तो कह रहे दोस्त चावल की देख मेरे हवाले कर दी थी। अच्छा देख तुम्हें क्या, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज है यूसुफ, आई एम जोहा फ्रॉम कराची। सॉरी मुझे पंजाबी नहीं आती इसलिए उर्दू में मैसेज किया है। मंडे को खुशी आप लोगों की कॉल से शामिल करेंगे 0511111001, और देखेंगे कि कौन कहां से है हमारे साथ, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहती हैं आप लोगों के लिए। नंबर हमने अनाउंस कर दिए हैं 0511111001 और 9202540 हमारा कॉलिंग नंबर है।

0: ओके जी, कॉल्स देखते हैं जी, कॉल कौन सी है, कौन है, कहां से है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: कौसर बात कर रही
0: है रवाद से। मुझे थोड़ा सा देखने दें कि आपका कौन सा माइक है। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है?
1: जी आपकी आवाज आ रही है। जी आ रही है आपको?
0: अब आ रही है।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
0: मैं ठीक हूँ। पंजाबी गल करनी है?
1: सॉरी मुझे पंजाबी नहीं आती।
0: पटवारी आती है?
1: पटवारी बस कुछ
0: नहीं। चलो जड़ी अशनी उससे गल कर सो।
1: अच्छा चलें, पहले आप स्टार्ट करें।
0: क्या हाल है? तुसे ना ठीक हो?
1: हाँ जी अल्लाह ने शुक्र ठीक ठाक। सुनो
0: अल्हम्दुलिल्लाह। एफएम सुनने से हो?
1: जी सुनने। अच्छा प्रोग्राम अच्छा है माशाल्लाह।
0: तो क्या चीज चंगी लगनी तुसे की प्रोग्राम में?
1: सारी चीजें चंगी है, सारे प्रोग्राम में अच्छी।
0: फिर भी जड़ी चीज तुसा की मजबूर कीता तुसा सुनने पे ते नाल तुसा कारु मिलाई?
1: तुसा आवाज
0: माड़ी बात क्या थती है?
1: नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी
0: है। अच्छा अच्छी है
1: जी। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। काफी टाइम मैंने ट्राई किया नहीं काल मिली।
0: अच्छा
1: आज मेरे भी
0: असि की कहते मतलब पटवारी, आप तो पटवारी बोल रहे हैं। असर की और कोई कॉल करना जे कोई नहीं तो ना लभने ना लोग नंबर
1: मिलाते रहते हैं
0: लगता है ये बिजी होती लाइन कभी बस। हाय हाय सही। और तबीयत
1: ठीक है? मेरा कुछ ठीक ठाक।
0: कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: सलाम सुनने वालों को सलाम।
0: थैंक यू।
1: और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है।
0: बहुत शुक्रिया।
1: एक बहुत अच्छा अंदाज है आपका।
0: बहुत शुक्रिया। और कुछ? बस वालेकुम सलाम जी।
1: आपने मेरी कॉल पिक की
0: जी, बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। 0511111001 अस्सलाम वालेकुम। गल पूरी की थी ना
1: पिछले हफ्ते इंतजार करने रहे हो फिर यार मैं कोई नहीं मेहमान आए थे ना पता नहीं लगना पहले कमेटरी गए पले।
0: ते तुसे ने कॉल अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जानवर शर्मा किदा ने? कोई नहीं
1: नहीं यार, जानवर ऐसा कोई नहीं किदा, क्योंकि 2 महीने च 8 तारीख बच्चे की शादी की थी, थोड़ी थी सुबह 2 बच्चे ने कट्ठी शादी है।
0: अच्छा माशाल्लाह जी।
1: फिर या फिर वो शादी ने फर्ज अदा कर सा या कुर्बानी ना अदा कर
0: सा। आई हाय मतलब दोनों पासे
1: मजदूरकार बंदा हुए थे, अब जमीन भी कोई नहीं, अब जगह भी कोई नहीं, तो वक्त भी गुजारा करते शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा तो तुसा को जाफर कोई सुने मंडी लगी है?
1: हां मंडी है, तो लगनी ना, तो लगंग मंडी लगनी ना।
0: अच्छा तो लगंग मंडी लगनी है।
1: हां बिल्कुल, कौन है कोई 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर है।
0: अच्छा चलो चक्कर लाने हैं फिर।
1: हां कल मंडी लग सी ना, कल सवार रहे ना।
0: अच्छा चलो हले लबने पे ना देखने
1: इस वारी तो बॉर्डर बंद, इस वारी तो डंगर सस्ते यार।
0: चलो देखने हले ते लगे हैं, देख कोई पसंद आया थे।
1: बकरा गिने या डंगर गिने?
0: बड़ा डंगर गिने जी।
1: अच्छा बड़ा डंगर गिने। अच्छा वो सारे सुनने दुआ सलाम ते बोले कि स्टार्ट सब सुनने ते
0: शुक्र अल्लाह ना जी, अपना ख्याल रखियो ठीक है। थैंक यू जी, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। और आप लोग सुनते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, तो बस यहाँ पे आने का जो एक सिलसिला है, वो जो एक आप लोगों के साथ एक मुलाकात होना होती है, वो पूरी हो जाती है। जीरो 5111001 01 9202540

फिर जब आप सामने वाले को देखते रहें कि अभी बात होगी, अभी बात होगी, और एक ही वक्त में आपके लिए मयस्सर नहीं है। जब से ये सोशल मीडिया है ना, ये बड़ी ही, अब क्या कह सकते हैं उसको, अजीब चीज़ है।

शाम को एक ही वक्त में रात के 10 बजे नींद आ जाए और एक ही वक्त में 4 बजे तक नींद ना आए, है ना, ये इंतजार होता है। जिंदगी से यही गिला है मुझे।

जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे. And just in case you forgot, my name is Mohammed Yusuf. आप लोगों की कॉल्स 051-111-0101-202-540 और 4471 पे आप लोगों की टेक्स्ट मैसेजेस. और मैसेज है जी, सलाम भाई क्या हाल है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. मेरा तो SMS भी नहीं पढ़ते. अच्छा जी जी, पढ़ते हैं, शामिल करते हैं आपके मैसेजेस, हम क्यों नहीं शामिल करते हैं. मुकद्दस कहूटा से मार्शल मौजूद हैं और नंबर स्लो बता दें जी, 051-051-000-1-1-1-0-0-1-1-1-1-0-0-1-1-1-0-0-1-1-1-0-0-1-1-1-1-0-1-1-25-40 एरिया कोड है 051 का, 051-920-2540. शकील अहमद हाशिम मौजूद लाहौर से, डियर ब्रो सलाम एंड सलाम टू ऑल, क्या हाल ने भरा दे, दुआ करना के ला सब नो सेहत वाली ते कामल ईमान वाली जिंदगी अदा करे, आमीन, थैंक यू सो मच. सर इतनी पंजाबी काफी है या जी जी बिल्कुल आए जी, बिल्कुल आए, आप पंजाबी में बात करेंगे, हम गपशप लगाएंगे, देखते हैं कि किसकी ज्यादा तगड़ी पंजाबी है आज. वैसे अरशद राही की जो पंजाबी है ना वो बहुत तगड़ी. वैसे

0: जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अलहमदुलिल्लाह। तुसी पंजाबी च गल करनी, तुसी लाहौर दे विच कारोबार करदे हो ना, पंजाबी लोग तुहानू टकरदे होण के पंजाबी दे विच गल करनी। हमदुल्लाह मला खेल पंजाबी समझ आती है ना?
1: नहीं,
0: गलत नहीं होगा ना, आप थोड़ी तो बंदा सोच समझ के बोल सकते है ना। अच्छा ले, आपका नाम ठीक है ना? पहले आपसे नाम पूछते हैं, थोड़ा ना की है। मेरा नाम हमदुल्ला मला खेल है। तुहाडा इलाका केड़ा?
1: इलाका जो मेरा कोई का इलाका
0: है यार। पंजाबी तो गल करनी है ना, की करदे तुसी?
1: बस हम कोशिश कर रहे हैं।
0: अच्छा चलो सही है, ठीक है। और तबीयत से ठीक है आपकी? सब सही जा रहा है? अच्छा, तो फिर ईद पे गांव जाना है?
1: जा रहे इंशाल्लाह, आप देख के तैयार।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो शॉपिंग वगैरह कर ली है?
1: हाँ बिल्कुल, सूट वगैरह यहाँ पे बना लिया और शूज भी लिया।
0: हाँ, और कुर्बानी ला पारा से शेख रे
1: संगा
0: कुर्बानी ला पारा थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम यूसुफ भाई, क्या हाल है? खैरियत है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं, तारुफ करवा दें।
2: मैं फजल महमूद बात कर रहा हूँ, कराची हिजरत कॉलोनी से।
0: जी कैसे हैं आप? ठीक हैं,
2: बस आपका शो सुन रहा हूँ, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते।
0: जी बस क्या करें जी, रास्ते कुछ ऐसे हैं।
2: सुबह बहुत कम हुए आज आपका शो, मेरे ख्याल में वो शायरी भाई का और वो उनका हुआ था सुबह में, जिसके बाद आपको अभी शो शुरू हुआ।
0: अच्छा ठीक है। नहीं, वो बाकी जो अपने लोकल स्टेशन है ना, वो अपने शो कर रहे होते हैं। ठीक है ठीक है, जी जी गल करो, तुसी कर सकते हो। जी जी
2: मेरी बात है।
0: अच्छा
2: अच्छा, बात सुने यूसुफ भाई।
0: जी जी,
2: ज्यादा पंजाबी मतलब नहीं आती, मैं थोड़ी थोड़ी समझता तो हूँ मैं, पर मैं बोल नहीं सकता, ज्यादा नहीं बोलता, कुछ थोड़ी थोड़ी बोल सकता
0: बस। ठीक है, जितनी आपने बोल दी इतनी बहुत है।
2: हाँ ना, तो समझता मैं हूँ।
0: चलो सही है, ठीक है। नेक्स्ट जो सॉन्ग होना का उनको डेडिकेट कर दूंगा आपके फ्रेंड्स को।
2: नाम दे सकते?
0: नहीं नाम नहीं लेने, किसी
2: डॉक्टर शफक उनको कहूंगा
0: मेरे। चले ठीक है, सबको सलाम दिया करें, बस नाम किसी के लेने की ज्यादा वो नहीं है कि स्पेसिफिक किसी को हमने सलाम देना। नहीं आप नहीं नहीं ज्यादा मजे ना लेना, आप बस जितना है सबको डेडिकेट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और मेरा लॉन्ग गवाचा या नहीं गवाचा,

जी हम से कुछ देर बाद हमें बढ़ना है शॉर्ट टाइम से ब्रेक की तरफ और न्यूज हेडलाइंस की तरफ वापस आएंगे इस ब्रेक के फौरन बाद। आप लोगों की पार्टिसिपेशन फेसबुक पे जो हमें मौसूल है उसको शामिल करेंगे। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शब गप अपने मेजबान मोहम्मद यूसुफ के साथ ठीक रात के 12 बजे तक।

Assalamualaikum, welcome back, or thank you so much, bahut shukriya. Story to be told, but something's still missing. आप लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस साथ साथ में शामिल कर रहा हूँ और facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान के ऑफिशियली पेज पे आप लोगों के कमेंट्स. मौजूद है जी मेरे से, थैंक यू सो मच आदाब यूसुफ, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया.

जी क्या बात है जी। वैसे अच्छा उन्होंने भी जो है वो रिप्लाई किया है। सारी रात क्यों जागते हैं जी, लभदे होना।

थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। facebook.com/fm101channel पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पे आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो शामिल किए देते, थोड़े से ही आते हैं, बाकी तो लोगों के आते हैं। श्याम ब्रदर के शो होते हैं जी थर्सडे को 12 से लेकर 2 बजे तक, और सैटरडे को होता है हफ्ते के रोज 10 से 12 बजे तक। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फैमिली गर्ल फ्रेंड्स क्वेट पाकिस्तान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। फजल खान काकर हमारे साथ मौजूद हैं, फजल महमूद हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम यूसुफ ब्रो, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। नज़ीर खोसो हमारे साथ मौजूद हैं, सोहबत पुर बलोचिस्तान से रियाज भट्टी हैं, फ्रॉम लाहौर अस्सलाम वालेकुम, बेहतरीन शो। अहमदुल्लाह खैर हमारे साथ मौजूद हैं, आपके कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। कल पे मोमिन है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। एक बार कहती हैं जी खुश आमदीद, जिनको पंजाबी नहीं आती वो क्या करें जी, उर्दू में बात करें आप, अरबी में बात करें, पश्तो में बात करें, कोई भी गाल करो। हफीज हमारे साथ मौजूद हैं ईदगाह जनूबी बखर से, मोहम्मद हफीज़ उर रहमान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।

0: ओके जी, और साथ साथ आप लोगों की कॉल्स को भी अगेन शामिल करते हैं और देखते हैं कि कौन कहां से है। Assalamualaikum.
1: Hello,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam. जी कौन कहाँ से?
1: जी मैं लाहौर से निशा यूसुफ भाई, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शो सुन रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है और पकड़ो की भी बातें हो रही
0: हैं।
1: और आपकी पंजाबी भी सुन रही थी।
0: लेकिन हो तो पंजाबी गल करनी मेरे नाल?
1: नहीं
0: नहीं मैं हार जावांगी, मेरी पंजाबी जाने बड़ी जिंदगी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: आप बताएं, आपने कुर्बानी के जानवर ले लिए?
0: नहीं जी अभी नहीं लिया, अभी ढूंढ रहे हैं साथ साथ।
1: लेकिन जो आजकल की जो भाई महंगाई है ना, उसमें दो एक बकरा कितना महंगा हो गया।
0: बस क्या करें जी, अल्लाह ताला हिम्मत दे तो इंशाल्लाह जरूर देखेंगे कोई।
1: या सर वैसे आप हर साल आप लेते हैं या हिस्सा डालते हैं?
0: जो कंफर्टेबल एक चीज हो गई तो वो कर लेते हैं।
1: ओके सही, तो फिर आपने इसकी वैसे कोई शॉपिंग की है कि नहीं?
0: नहीं जी,
1: क्या सारी मतलब ईद पे सोना है?
0: नहीं बस ऐसे ही है, ईद पे हम कसाई बन
1: जाते हैं, वो सारी छोटी ईद पे भी और बकरा ईद पे भी मुझे लगता है सोते हैं, सिर्फ नींद पूरी करते हैं।
0: नहीं बड़ी पे हम बन जाए, बकरा ईद पे हम कसाई बन जाते हैं ना इसलिए।
1: कसाई तो बनते हैं लेकिन फिर बाद में रात की नींद पूरी करते हैं।
0: ऐसे ही है।
1: और फिर ये भी होता है भाई, वैसे आप जो लड़कियां होती है ना वो कुर्बानी का गोश्त बहुत कम खाती है, बिल्कुल भी नहीं खाती है, वो मुर्गी तो खाती है।
0: अल्लाह तो टकरे कोई नहीं ना वैसे।
1: नहीं हम लोग भी करते हैं लेकिन मैं जो है बकरे या बैड़े या ऊंट का गोश्त नहीं खाती हूँ। मैं कहती हूँ भूखा रह लूंगी लेकिन ये नहीं खाऊंगी, मुझे कुछ और ला के दो।
0: क्यों मतलब की चाला मारता?
1: नहीं नहीं मैं वो खाती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाती। मुझे पता नहीं क्या होता है, अगर कोई मतलब शोपर भी घर पे पकाने के लिए आ जाए तो मैं वो शोपर भी नहीं पकड़ती हूँ हाथ के अंदर।
0: बस फिर साडा घर तुहाडे घर दे नेड़े होना चाहिए, तुहाडे सारे शापर असीं फड़ लिया करिए। हैं
1: ठीक है आप ले ली वैसे भी, क्योंकि मैं तो खाती नहीं।
0: अच्छा चलिए मजाक
1: कर रहा हूं। गोश्त खा लेते हैं आप पता है इंसान इस चीज पे ये लोग करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुर्बानी कुछ तो करते हैं लेकिन कुर्बानी जो होती है भाई मेरी नजर के अंदर के इंसान अगर कुर्बानी करते हैं अल्लाह के आगे करते हैं तो इंसान को चाहिए कि इस मौके पे सबके घरों में बांटा जाए। ये नहीं किया करें कि अपनी फ्रिज भर लिया करें जो कुर्बानी करते हैं, असल में तो हम भी पर कुर्बानी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के लिए, साल हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि जो कुर्बानी करते थे मेरे पापा वो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं तो उनकी वजह से अब ऐसा कोई सीन नहीं रहा, क्योंकि भाई जो है वो फिर उसके ऊपर सबसे जिम्मेदारी है तो वो अब नहीं कर सकता ऐसा कुछ भी।
0: चले अल्लाह ताला हिम्मत दे जी, और आप लोग भी जो है वो अगेन जो है वो देखें आप जब नियत करते हैं ना तो अल्लाह ताला खुद ही बेहतर मामला कर देते हैं।
1: ऐसा बिल्कुल है कि अल्लाह बीच में बरकत डाल ही देता है।
0: बिल्कुल
1: लेकिन कह रहे हैं कि चलो इस बार अगर कुछ लेना नहीं है तो फिर इस बार यादव कह रहे हैं सही डालेंगे।
0: ठीक हो गया
1: जी। साल आया करते थे बच्चे के पापा लेके आते थे और खुशी उसकी अलग होती थी, पापा कहते थे तुम उछलती हो और उसका गोश्त तो खाती है, पापा खुशी होती है जानवर की वजह से खाती नहीं गोश्त।
0: अच्छा सही हो गया ठीक है।
1: और आपकी अब वैसे माशाल्लाह गाना गाते हैं ना वाकई बहुत प्यारी आवाज है, आपके सॉन्ग इतनी प्यारी आवाज में गा लेते हैं, आपके सॉन्ग में सुन गई थी जब अपनी आवाज में आप गा रहे थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का
1: भी। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
0: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपने लाहौर से हमें कॉल की है। د ټولو پښتونو مینوالو سره پاره خلک دنیا اخلي زه یار اخلم لیلا تاوري تاوري چیرته روک شوه

कुछ लोग तालु खत्म नहीं करते, बस रवैयों की शिद्दत जो है बढ़ा देते हैं। बड़ी महारत से आपको वो इस हद तक जरूर ले आते हैं कि आप चिल्ला उठें, बदगुमान होकर खुद को ही उनसे दूर कर लें। पर कहानी यूं सुनाई जाती है जैसे कसूर आपका था, जैसे आपने जल्द

और कभी कभी जिंदगी के कुछ लम्हे अल्फाज से ज्यादा खामोशी में सिमट जाते हैं। इंसान सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली महसूस करता है, जैसे खुशियों के दरमियान भी एक अधूरापन हो। ये एहसास ना किसी एक शख्स का होता है, ना किसी एक वजह का, बल्कि ये वो कैफियत है जो वक्त के साथ दिल में उतर जाती है। फिर इंसान हंसते हुए भी कहीं ना कहीं टूटा हुआ महसूस करता है, और हम सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं, मगर हर कोई इन्हें जाहिर नहीं करता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, मगर अंदर ही अंदर इंसान को

मेरे लफ्जों को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, मेरे लफ्जों को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, मैंने बीच में अपनी जिंदगी बर्बाद की है।

11:44 बज जाते हैं सामिन, और जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। जब उन सब चीज़ों को आपने अकेले में फेस करना है या सारे मामलात को आपने खुद ही डील करना है, तो ये खोखले रिश्ते और सहारे किस लिए? जो इंसान आपके दुख दर्द और गमी में आपके साथ ना हो, खुशी के लम्हात वो क्यों कर एंजॉय करे आपके साथ? और जब आपने हमेशा अपना 100% दिया हो, कि उस इंसान को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये फैंटेसी की दुनिया है। दिखावे की है। आप जितना भी कर लें, आपसे अच्छे लोग जो है वो दुनिया में खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। आप जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें, आपसे अच्छे लोग खुद ही आ जाते हैं जिंदगी में।

कि तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा, इश्क आंखों में छुपाऊंगा, चला जाऊंगा, अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। ख्वाब लेने कोई आए कि न आए कोई, मैं तो आवाज लगाऊंगा चला जाऊंगा। चंद यादें मुझे बच्चों की तरह प्यारी हैं, उनको सीने से लगाऊंगा चला जाऊंगा। इन गलियों से कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुम्हें देखने आऊंगा चला जाऊंगा। तुम मेरे संग चलो या ना चलो, मैं तो आवाज लगाऊंगा चला जाऊंगा। कि मुद्दतों बाद मैं आया हूं पुराने घर में, खुद को जी भर के रुलाऊंगा चला जाऊंगा। इस जजीरे में ज्यादा नहीं रहना अब तो, आजकल नाव बनाऊंगा चला जाऊंगा। मैंने ये जंग नहीं छेड़ी अपने लिए, तख्त पे तुमको बिठाऊंगा चला जाऊंगा।

मौसे मंगल की तरह लौट के आऊंगा मैं, हर तरफ फूल खिलाऊंगा, चला जाऊंगा तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा।

मुझे कोई साथ है आपके, हमारे साथ की है, और मैं तेरी एक झलक को भी तरस जाता हूँ। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो तुझे रोज देख

अगर ज़िंदगी में आपके साथ अच्छा चल रहा है तो लाजमी नहीं है कि हर इंसान बिल्कुल वैसे ही जैसा आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं।

वन फुल टाइम। अगली मरतबा जब आपसे मुलाकात होगी और जब भी मुलाकात होगी हो फुली एक नए अज़म के साथ और भोले नहीं होंगे आप। लेट्स प्रूव इट। ये आपने साबित करके दिखाना है डोंट हैव अ शॉर्ट मेमोरी।

तन्हाई से छुटकारा पाने को अपनाया था तुम्हें, मुकद्दर है तन्हाई ना मालूम था हमें, करके तन्हाई में तुमसे कुछ मीठी मीठी बातें, अकेले में होना है ये महसूस करने का तुम्हें, आ जाना मिटा जाना इस तन्हाई को, कि फिर से दावत हम देते हैं तुम्हें, अल्लाह हाफिज़।

ऐ मेरे कुन फयकुन, तेरी हद से मैं कहां दूर निकल सकता हूं। ऐ मेरे कुन फयकुन, तेरी हद से मैं कहां दूर निकल सकता हूं। तेरी मर्जी है मुझे तोड़ दे और फिर से बना, फिर मुझे खाक नशीन करके यूं ही जीना सिखा। मेरे अंदर जो खला है मेरे मौला भर दे, तूने जो खास तवज्जो से बनाया है ये दिल, इसको मिट्टी में मिला दे या तो पूरा कर दे। मेरे खालिक, मैं तेरे कुन की तलब में जिंदा, हर घड़ी एक कयामत से गुजर जाता हूँ। इतनी शिद्दत से मेरा पहलू सुलग उठता है, दर्द की हद से गुजर जाता हूँ, मर जाता हूँ। ऐ मेरे खालिक,

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है परवरदिगारे दो आलम के बाबरकत नाम से, जो नहायत मेहरबान है, जिसकी शफकत अबदी है। तमाम बुजुर्गी है उस रब्बे कायनात के लिए जो वाहदहू ला शरीक है, जो बनाने वाला है छः दिनों में अर्ज़ो समा को, मालिक है नीली छतरी का और अर्शे मौला पे बैठे हुए आपकी और मेरी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। वो समी है जो सुन लिया करता है आपके और मेरे दिल की धड़कनों को, वो बसीर है जो देख लिया करता है काली रात में काले पहाड़ के काले पत्थर पे चलने वाली काली चुंटी को। वो हिदायत देना चाहे तो वो मुकल्लिबुल कुलूब है, और वो रास्ते हमवार करना चाहे तो वो मुसब्बिबुल असबाब है। वो रहमान भी है, वो जब्बार भी है, वो रहीम भी है, वो कहार भी है। वो तौबा कबूल करना चाहे तो वो तवाब भी है, और वो मुजरिमों से इंतकाम लेना चाहे तो वो मुंतकिम भी है। ज़मीन व आसमां में जो कुछ है उसी का है, हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं, और एक दिन हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है।

0: तो जनाब इसी तरह मौसीकी भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती रहेगी, और एक खूबसूरत सा ट्रैक है जो कि रीमिक्स में है मंसूर मलंगी का, उसको प्रोग्राम के आगाज़ में शामिल करने जा रहा हूँ। उससे लौट कर आऊँगा तो गुफ्तगू का सिलसिला बांधने के सुनते रहिएगा।
1: तुम खुशंद ये सरकार

खिजां के आखिरी दिन थे, खिजां के आखिरी दिन थे, बहार आई न थी, लेकिन हवा के लम्स में एक बेसदा सी नगमगी महसूस होती थी। दरख्तों के तहय्युर में किसी बेआसरा उम्मीद की लौ थरथराती थी। गुजरगाहों में उड़ते खुश्क पत्ते अजनबी लोगों के कदमों से लिपटते और उलझते थे, तो एक भूली हुई तस्वीर जैसे कौंद जाती थी। हर एक मंजर के चेहरे पर ललचती बेकली की रेशमें चिलमन कशीदा थी, नजर रस्ता न पाती थी। कुछ ऐसा ही समा था जब वो मेरे बख्त के सहरा में सावन की तरह उतरी, मेरी सांसों में महकी थी, निगाहों के सितारे आरजू के इस्तारे थे, तमन्नाओं के सेले शौक में बहने लगी थी। वो मेरे सीने पे सर रख कर अचानक मुस्कुराई और कुछ कहने लगी थी। वो न जाने क्या था वो जुमला, वो उसका अद कहा जुमला जो गुंचे की तरह उन कामते होंठों पे फूटा था। उसी लम्हे कोई कोयल बड़े ही दर्द से कूकी थी, वो जैसे नींद से जागी थी। उसने बड़े ही दुख से फलक की समत देखा था। वो बोल रहा उन कामते होंठों पे फूटा था। उसी लम्हे कोई कोयल बड़े ही दर्द से कूकी थी, वो जैसे नींद से जागी थी। उसने बड़े ही दुख से फलक की समत देखा था। वो बोली थी सितारा सितारा शाम का रोशन।

फिर उसके हुस्न का महरम तेरा दिल होने वाला है। वो उसका कहा जुमला मुकम्मल होने वाला है।

टेलीफोन लाइन्स अब आपके लिए खोल दी गई हैं। नंबर है 920254 920254 और इस्लामाबाद रावलपिंडी का सिटी कोड 051

अब दूर ही रह या मिल सजना, तुझे सौंप दिया है दिल सजना। अब दूर ही रह या मिल सजना, तुझे सौंप दिया है दिल सजना। अब खुशबू हर सू फैलेगी, एक जख्म गया है सिल सजना, एक जख्म गया है खिल सजना। अब दूर ही रह या मिल सजना, तुझे सौंप दिया है दिल सजना। अब खुशबू हर सू फैलेगी, एक जख्म गया है खिल सजना। हर रात तेरे बिन सीने पर है धरी हुई एक सिल सजना। हर हुस्न मैं वार दूं तुम पर से, हर हुस्न मैं वार दूं तुम पर से, क्या आंखें आरिज दिल सजना। हर हुस्न में वार दूं तुम पर से, क्या आंखें आरिज दिल सजना। सीने में मीठा मीठा दुख, सीने में मीठा मीठा दुख, आंखों में है झिल मिल सजना। अब दूर ही रह या मिल सजना, तुझे सौंप दिया है दिल सजना। जी हजरत, मोहब्बतों के आगाज कुछ इस तरह के हुआ करते हैं। यूं लगता है कि अपनी कुल कायनात सौंप दी गई है किसी को। तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ ना ही जो हो वत सो तोर। यूं है कि कुछ अपना रहता नहीं है और कुछ अपना रखना चाहते नहीं है। जो कुछ है बस निशावर कर देना होता है, ऐसा कुछ जज्बा रखते हैं मोहब्बत करने वाले। गो कि ये जज्बा तो हमेशगी का हुआ करता है, लेकिन शिद्दत पाई जाती है आगाज मोहब्बत में। खूबसूरत हुआ करते हैं वो लम्हे जो इंसान हम इंसान यादें बना लिया करते हैं, अपनी जिंदगी भर के लिए संभाल कर रखते हैं उस सामान को।

तुम जहां पे बैठ के जाती हो, जिस चीज को हाथ लगाती हो, मैं वहीं पे बैठा रहता हूं, उस चीज को छूता रहता हूं। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूं, तुम कैसी मोहब्बत करती हो? तुम जिससे हंस के मिलती हो, मैं उसको दोस्त बनाता हूं। तुम जिस रास्ते पर चलती हो, मैं उससे आता जाता हूं। तुम जिनको देखती रहती हो, वो ख्वाब सरहाने रखता हूं। तुमसे मिलने जुलने के कितने ही बहाने रखता हूं। कुछ ख्वाब सजाकर आंखों में पलकों से मोती चुनता हूं। कुछ ख्वाब सजाकर आंखों में पलकों से मोती चुनता हूं। कोई लम्स अगर छू जाए तो मैं पहरों उसको सोचता हूं। जिन लोगों में तुम रहती हो, तुम जिनसे बातें करती हो, तुम जिनसे हंस के मिलती हो, जो तुमको अच्छे लगते हो, वही मुझको अच्छे लगते हैं। और जिस बाग में सबको जाती हो, जिस बाग में सबको जाती हो, जिस सब्जे पर तुम चलती हो, जो शाख तुम्हें छू जाती है, जो खुशबू तुमको भाती है, वो ओस तुम्हारे चेहरे पर जो कतरा कतरा गिरती है, वो तितली छोड़ के फूलों को जो तुमसे मिलने आती है, जो तुमको छूने आती है, उन सब के नाजुक जज्बों में मेरे दिल की धड़कन बसती है, मेरी रूह भी शामिल रहती है। तुम पास रहो या दूर रहो, नजरों में समाई रहती हो, मैं तुमको तकता रहता हूं, मैं तुमको सोचता रहता हूं। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूं, तुम कैसी मोहब्बत करती हो? हर मौके पर, हर मंजर में मैं साथ तुम्हारे रहता हूं। मैं चश्मे तसव्वुर में अक्सर बस तुमको देखता रहता हूं, बस तुमको सोचता रहता हूं, बस तुमको सोचता रहता हूं। तुम जहां पे बैठ के जाती हो, जिस चीज को हाथ लगाती हो, मैं वहीं पे बैठा रहता हूं, उस चीज को छूता रहता हूं। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूं, तुम कैसी मोहब्बत करते हो? तुम कैसी मोहब्बत करते हो?

जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वक्त की रवानी है, बख्त की गरानी है, सख्त बेजमीनी है, सख्त लामकानी है, हिजर के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। हिजर के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है, तुमको जो सुनानी है, तुमको जो सुनानी है, बात गो जरा सी है, बात उम्र भर की है। उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती है। दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती है। आंख के दरीचे में तुमने जो सजाया था, बात उस दिए की है, बात उस किले की है। आंख के दरीचे में तुमने जो सजाया था, बात उस दिए की है, बात उस किले की है। जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है, लफ्ज की फसीलों पर टूट टूट जाता है। जिंदगी से लंबी है, बात रत जगे की है। रास्ते में कैसे हो, बात तखलिए की है। और तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है, तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में।

मुझे कहते हैं आतिर अली सैयद और मुसाफत शब FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप रेडियो पाकिस्तान का इस्लामाबाद स्टेशन। 12:00 तकरीबन 42 मिनट हुआ चाहते हैं 2 बजे तक का आपका और मेरा साथ रहेगा इस महफिल में। अपने पैगामात मुझ तक पहुंचाइएगा मोबाइल के रेड मैसेज ऑप्शन में 101 लिखिएगा एक स्पेस के बाद अपना पैगाम अपने नाम और जगह के नाम के साथ 4471 पर भेजिएगा। इसके साथ साथ facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान वेब एड्रेस है फेसबुक पर, उस पेज को लाइक भी कीजिएगा और वहाँ पर एक स्टेटस अपडेट हुआ है आतिर अली सैयद और 101 इंटरनेशनल के नाम से।

चेहरे पे मेरे जुल्फ को फैलाओ किसी दिन, क्या रोज गरजते हो बरस जाओ किसी दिन, राजों की तरह उतरो मेरे दिल में किसी शब, दस्तक पे मेरे हाथ की खुल जाओ किसी दिन, पेड़ों की तरह हुस्न की बारिश में नहा लूं, बादल की तरह झूम के घर आओ किसी दिन, खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से, फूलों की तरह मुझ पे बिखर जाओ किसी दिन, गुजरे जो मेरे घर से तो रुक जाएं सितारे, इस तरह मेरी रात को चमकाओ किसी दिन, मैं अपनी हर एक सांस उसी रात को दे दूं, सर रख के मेरे सीने पे सो जाओ किसी दिन, चेहरे पे मेरे जुल्फ को फैलाओ किसी दिन, क्या रोज गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। जी हाँ, सच आगाज़ मोहब्बत और वसल की ख्वाहिशात, ये इंसानों की इंसानों से मोहब्बत बहुत अजीब हुआ करती है। जैसे कि पहले जिक्र किया कि अपनी कुल कायनात बना लिया करते हैं, कोई एक लम्हा वसल का मयसर आ जाए और सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, वो लम्हे फिर खत्म होने का नाम नहीं लिया करते, सदियों पर मुहित हो जाया करते हैं। शिद्दत है जज्बे में और शायद इंसान को इस जज्बे से आशना करना मकसूद हुआ करता है। ये जज्बा हमेशा से कायनात में रहा है और होता है, मुंजमिद रहता है शायद हम इंसानों के अंदर, और कोई वजह बनती है कि ये धीरे धीरे पिघलने लगता है। वो वजह कभी कोई इंसान हुआ करता है, कभी कोई वाकया हुआ करता है, और कभी इंसान हकीकत में हकीकत आशना हो जाता है। लेकिन वो लम्हे संभालता है इंसान, जिनका पहले जिक्र किया, एक पटारी में संभालता चला जाता है, एक एक लम्हे को, एक एक जुमले को, किसी खुशबू को, किसी मौसीकी को, किसी मकाम को, सूखे फूलों को, चंद अशआर को, ये उसका कुल असासा हुआ करते हैं। कैसी मासूमियत पाई जाती है ना इंसानों में, वो इंसान जिसको हम सुनते हैं कि कितने जुल्म ढाता है, क्या कुछ कर गुजरता है, सितारों पर कमंदे डालता है, पाताल तहों को खोजता है, समंदरों की गहराइयों तक पहुंचने की काविश हुआ करती है, वो इंसान ये बेजान चीजें संभालता फिरता है। और ये चीजें तो क्या है, चंद लम्हे, ऐसे लम्हे जो उसको मैसर आ जाते हैं, जो कभी उसका ख्वाब हुआ करते हैं, जो उसकी ख्वाहिश हुआ करते हैं,

कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो, मुझे एक राहत नवाज दे मगर उसके बाद सहर ना हो। वो बड़ा रहीम और करीम है, मुझे ये सिफत भी करे अता, तुझे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर ना हो। एक ऐसा लम्हा, वसल का लम्हा, जिसको जी लेने के बाद शायद कोई और ख्वाहिश रहती नहीं है, ऐसा लगता है उस वक्त में। आगाज़े मोहब्बत की खूबसूरती और उसकी शिद्दत ऐसी ही हुआ करती है, तो फिर वो लम्हे मुयस्सर आ जाते हैं जो मुनक्कश रह जाते हैं कहीं जहन के गोशों में आने वाले वक्त के लिए, जब कभी फिर से उस पटारी को खोला जाए और उन लम्हों को जिंदा किया जाए और उन लम्हों को जीने की काविश हो और जी लिया जाए ठीक उसी तरह जैसे तब जिया था। ऐसा हसीन दिन कहीं देखा सुनाना था। हम थे हमारे साथ कोई तीसरा ना था, ऐसा हसीन दिन कहीं देखा सुनाना था। आंखों में उसकी तैर रहे थे हया के रंग, पलकें उठा के मेरी तरफ देखता ना था। कुछ ऐसे उसकी झील सी आंखें थी हर तरफ, हमको सिवाय डूबने के रास्ता ना था। हाथों में देर तक कोई खुशबू रची रही, दरवाजा ये चमन था वो बंदे कबाना था। उसके तो अंग अंग में जलने लगे दिए, जादू है मेरे हाथ में मुझको पता ना था। सांसों में थे गुलाब तो होंठों पे चांदनी, इन मंजरों से मैं तो कभी आशना ना था। रोया कुछ इस तरह मेरे शाने से लग के वो, ऐसे लगा कि जैसे कभी बेवफा ना था। है इश्क एक रोग मोहब्बत अजाब है, एक रोज ये खराब करेंगे कहा ना था। हम जद वहां पे हद कोई रहती हुई किस तरह, रुकने को कह रहा था मगर रोकता ना था। हम जद वहां पे हद कोई रहती हुई किस तरह, रुकने को कह रहा था मगर रोकता ना था। हम थे हमारे साथ कोई तीसरा ना था, ऐसा हसीन दिन कहीं देखा सुना ना था। आंखों में उसकी तैर रहे थे हया के रंग, पलकें उठा के मेरी तरफ देखता ना था।

उदासी के अफक पर जब तुम्हारी याद के जुगनू चमकते हैं, उदासी के अफक पर जब तुम्हारी याद के जुगनू चमकते हैं, तो मेरी रूह पर रखा हुआ यह हिजर का पत्थर चमकती बर्फ की सूरत पिघलता है। अगरचे यूं पिघलने से ये पत्थर संग रेजा तो नहीं बनता, मगर एक हौसला सा दिल को होता है कि जैसे सरबसर तारीख शब में भी अगर एक जर्द रू सहमा हुआ तारा निकल आए, कि जैसे सरबसर तारीख शब में भी अगर एक जर्द रू सहमा हुआ तारा निकल आए, तो कातिल रात का बेस्म जादू टूट जाता है। मुसाफिर के सफर का रास्ता तो कम नहीं होता, मगर तारे की चिलमन से कोई भूला हुआ मंजर अचानक जगमगाता है। कोई भूला हुआ मंजर अचानक जगमगाता है। सुलगते पाँव में एक आबला सा फूट जाता है। सुलगते पाँव में एक आबला सा फूट जाता है।

0: मेरा नाम है आदिर अली सैयद और मुसाफत शब FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। 9202540 पर आपके टेलीफोन कॉल्स हैं, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम बिलाल, यार दा नजारा लैन दे, पहली बारी सजना है आते वाली वनो वनो सच्ची गल कहन दे।
0: अच्छा जी।
1: हाँ जी, तबीयत कैसी आपकी?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ जनाब, आप ठीक हैं?
1: बिल्कुल सही है आपके माशाल्लाह।
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतर है बेहतर है।
1: शुक्र है, शुक्र है, अल्लाह पाक का शुक्र है
0: जी हुजूर।
1: और कोई टॉपिक रखा है?
0: नहीं जनाब, मेरे प्रोग्राम में टॉपिक नहीं हुआ करता।
1: वो मुझे भी पता नहीं होता है, मुझे भी पता है टॉपिक कभी रखते हैं कभी नहीं रखते हैं। ज्यादा करके शायरी का प्रोग्राम होता है, लिहाजा हमारे यहाँ भी आवाज आती है। कोर्ट का बंदा बात कर रहा हूँ आपसे, हमारे यहाँ आवाज आती है आपकी। हेलो
0: जी जी जी जी हुजूर।
1: तो हमारे यहाँ भी जो है ना, हमारे मुल्क में भी आवाज आती है, हम सुनते हैं आपका।
0: ठीक
1: और
0: है।
1: आपकी जो 101 की तिलावत जो है ना देते हैं आप, और माशाल्लाह उसका तर्जमा देते हैं, वो भी हम सुनते हैं उधर।
0: सलामत।
1: दूसरी बात ये है कि अल्लाह आपका भला करे, अभी आज का वो हो रहा है तो इब्राहिम अलैहि सलाम का जो है ना प्रोग्राम जो है ना वो भी इन दिनों में ना शुरू कराएं।
0: करेंगे इंशाल्लाह। सलामत रहे जनाब, बहुत शुक्रिया।

इश्क क्या चीज है ये पूछिए परवाने से, जिंदगी जिसको मयसर हुई जल जाने से। मौत का खौफ हो क्या इश्क के दीवाने को, मौत खुद कांपती है इश्क के दीवाने से। और हो गया ढेर वहीं आह भी ना, आह भी निकली ना कोई। हो गया ढेर वहीं आह भी निकली ना कोई, जाने क्या बात कही शमा ने परवाने से। हुस्न बेइश्क कहीं रह नहीं सकता जिंदा, बुझ गई शम्मा भी परवाने के जल जाने से। और खाए जाती है नदामत, खाए जाती है नदामत मुझे इस गफलत की। होश में आके चला आया हूं मैं खाने से। कर दिया गर्दिश अय्याम ने रुस्वा साहिर, मुझको शिकवा है यगाने से न बेगाने से। इश्क क्या चीज है ये पूछिए परवाने से, जिंदगी जिसको मयसर हुई जल जाने से।

मेरी गुजरी मुसाफत की थकन अब लौट आई है। सुनो कि रेगजारे उम्र का ये आखिरी जर्रा मेरी बेजान हथेली से फिसलता जा रहा है। अब सुनो कि रेगजारे उम्र का ये आखिरी जर्रा मेरी बेजान हथेली से फिसलता जा रहा है। अब मेरी गुजरी मुसाफत की थकन अब लौट आई है। मेरे कासिद सुनो, मेरे कासिद सुनो, जाने से पहले इतना कहना है। मेरे उजड़े शहर के उन गली कूचों में जाओ तो जहां बचपन बिताया था, जहां सब कुछ गवाया था, तो उस वीरान खंडर को पयामे आखिरी देना। वहीं आंगन में दाएं हाथ पे एक पेड़ देखोगे, उसी बूढ़े शजर के संग रसीदा से बदन पर तुम मेरे बेरंग हाथों की लकीरों की तरह एक जाल देखोगे। उसी पीपल की छाओं में किसी मासूम के दिल ने कई सपने सजाए थे, किसी की आंख के आंसू किसी दिल ने बहाए थे, किसी की झील आंखों ने कई सागर लुटाए थे। बहुत नरमी से उस पीपल को छूकर इतना कह देना, क्या आंखों के ये दरिया कहीं सागर नहीं रोते। मुकद्दर जिनका सोता है कभी फिर वो नहीं सोते। उसे कहना मेरे कासिद, जिन्होंने उम्र सारी तेरी छाओ में बसर कर दी, वो आखिरी पल तुम्हारे पास आकर कुछ न कह पाए, लिपट कर तुमसे रो लेंगे अगर दुनिया में रह पाए, लिपट कर तुमसे रो लेंगे अगर दुनिया में रह पाए। सुनो कासिद, वहां से चंद कदम के फासले पर एक चौखट है, वही चौखट है ये प्यारे, जहां सजदे किए हमने, जहां पर जिंदगी हारी, जहां कुछ पल जिए हमने, जहां पर जान ये वारी, जहां पर जिंदगी हारी, जहां सजदे किए हमने, जहां पर जान ये वारी। जवां मर्गी पे मेरी शहर ये मातम कुना होगा, मगर उस एक चौखट पर अजब सा ही समा होगा। वहां रक्सां सभी चेहरों पे कुछ रानाइयां होंगी, वहां बजती चहारों सू बहुत शहनाइयां होंगी, वहां जिसकी नजर में जीत जाने की थकावट हो, मगर उस दिलनशीन चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट हो, समझ लेना मेरे कासिद यही कातिल मेरा ठहरा। वहां जिसकी नजर में जीत जाने की थकावट हो, मगर उस दिलनशीन चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट हो, समझ लेना मेरे कासिद यही कातिल मेरा ठहरा। मेरी आंखें ये ले जाओ, मेरी आंखें ये ले जाओ, मेरा ये काम कर देना, उसे जी भर के तकना तुम मेरी आंखों में भर लेना। मेरी आंखें ये ले जाओ, मेरा ये काम कर देना, उसे जी भर के तकना तुम मेरी आंखों में भर लेना, उसे चुपके से कह देना, तुम्हारी जीत की खातिर ये बाजी जो शख्स हारा है, तुम्हारी जीत की खातिर ये बाजी जो शख्स हारा है, नहीं तुम हो सके उसके, वो मरकर भी तुम्हारा है, नहीं तुम हो सके उसके, वो मरकर भी तुम्हारा है। नहीं नहीं बल्कि मेरे कासिद, उसे तुम कुछ नहीं कहना, उसे तुम कुछ नहीं कहना, उसे तुम कुछ नहीं कहना।

0: मेरा नाम है आतिर अली सैयद अल मुसाफत शब एफ एम 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। रेडियो पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टेशन 1:00 तकरीबन 27 मिनट हुआ चाहते हैं। 2 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा इस महफिल में। और आपकी टेलीफोन कॉल्स हैं 9202540 पर, एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ जी, आप ठीक हैं?
1: अल्लाह का शुक्र है। अभी पता चला आपके वालिद साहब भी बेहतर हैं, अल्लाह का बड़ा करम
0: जी।
1: आज की जान तो दिख गया है, मुबारक हो आपको भी, आपकी फैमिली को और आपके सब सुनने वालों को। अल्लाह ताला से दुआ है जितने भी लोग हज पर गए हैं, रिश्तेदारों में, अहबाब में, मिलने वालों में, सबकी दुआएं और सबकी बातें कबूल फरमाए अल्लाह ताला। और यहाँ थोड़ी बहुत जो हम लोग भी कर ही लेते हैं, अल्लाह ताला उसे भी कबूलियत के दर्जे तक ले जाए, ये दुआ है। आपका इंतखाब बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन लगता ये है कि जरा थोड़ी ये पड़ी पड़ी सी शायरी हो रही है, चल रही है ज्यादातर ना, तो बहरहाल आप पढ़ते अच्छा है, अच्छा लगता है।
0: क्या चल रही है ज्यादातर
1: शायरी जो आप अक्सर पढ़ रहे हैं ना, फराज साहब की है या उनकी है, हमारे कतील साहब की है या हमारे क्या नाम है जी, नाम भी तो मैं भूल जाती हूँ ना, ये अमजद इस्लाम अमजद साहब की।
0: हाँ जी।
1: तो ये चीजें वो है जो आखिर अक्सर वेस्टर ना मेरी पढ़ी हुई होती है, तो खैर बहरहाल फिर भी अच्छा लगता है कोई और अपने अपने तरीके से पढ़े। तो मैं आपको ये सुनाती हूँ, मेरे ख्याल में ये नहीं आपने सुनी होगी शायद, मेरा ख्याल है कि सितमगढ़ से क्यों दिल लगाया मैंने, न जाने ये क्यों धोखा खाया मैंने, वफाओं का मुझको सिला क्या मिला है, लहू चश्म तर से बहाया मैंने, तुझे छोड़ दूं मैं ये कैसे मुमकिन, तुझे कितनी मुश्किल से पाया है मैंने,

0: कभी तूने देखा नहीं और से क्यों तेरा में दिल बिछाया है मैंने बड़े शौक से जो बनाया था एक घर उसे अपने हाथों किराया है मैंने मुझे जोश ये वो हमारे जोश नहीं है ये दूसरे एक भी जोश रहा
1: ठीक है
0: मुझे जोश एक मुस्कुराहट मिली है मुझे जोश एक मुस्कुराहट मिली है उसे हाल दिल जब सुनाया है मैंने बेदर्दी का आलम देख रहे हैं हम
1: सही
0: तो बहरहाल पता नहीं आपका कुछ पता नहीं चल रहा आपको कुछ कौन सा शेर कोई अच्छा लगा या नहीं लगा नहीं। बहुत कम गुफ्तगू करते हैं आप
1: बहुत अच्छा बस। नहीं मैंने आपको मौका दिया मुकम्मल
0: जी और... मुझे अंदाजा है जीते रहिए खुश रहिए बहुत खूबसूरत लगता है आपका प्रोग्राम सुनने में भी और गुफ्तगू में भी बहुत अच्छे बहुत सारे दुआएं आपके लिए आपकी फैमिली के लिए सब सुनने वालों के लिए जीते रहिए
1: सलामत रहिए बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़

तेरे गम को जहां की तलाश थी तेरे जहां निसार चले गए, तेरी राह में करते थे सर तलब सरे राह गुजार चले गए, तेरी कजदाई से हार के शब इंतजार चली गए, तेरी कजदाई से हार के शब इंतजार चली गई, मेरे जब्त हाल से रूठ कर मेरे गम गुसार चले गए, न सवाल वसल न अर्ज गम न हिकायतें न शिकायतें, तेरे अहद में दिले जार के सभी इख्तियार चले गए, ये हम ही थे जिनके लिबास पर सरे राह स्याही लिखी गई, यही दाग थे जो सजा के हम सरे बज में यार चले गए, न रहा जनूने रुखे वफा ये रसन ये दार करोगे क्या, जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था वो गुनाहगार चले गए, जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था वो गुनाहगार चले गए।

मेरा नाम है आतिर अली सैयद और मुसाफत शब FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। हमेशा की तरह जाने से पहले चंद जुमले शामिल करना चाहूँगा जो काबिश हुआ करती है कि आपकी समाअतों के तवस्सुत से अपने आप को समझाता चलूँ। हजूर, मोहब्बतों की बात की, मोहब्बतों के आगाज की और आगाज की खुशियों की, उन लम्हों की जो इंसान कैद करके रखना चाहते हैं अपने पास, जिनको हमेशा जीना चाहते हैं और फिर गुजरते वक्त के साथ साथ वो जज्बे अक्सर धुंधले होते चले जाते हैं और फिर हम इंसान खुद को मोहब्बत में हारा हुआ महसूस करते हुए मुजमहिल होकर किसी जुस्तजू में खुद को पाते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि जिंदगी ऐसी क्यों है। या फिर ये सवाल हुआ करता है अक्सर हम इंसानों का खुद से कि मेरे साथ ऐसा क्यों। जैसे कि पहले कहा था कि ये मोहब्बत का जज्बा हम इंसानों के अंदर पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये किसी वक्त में वारिद होता है। हाँ, यूं जरूर है कि ये मुंजमिद रहता है और कोई वाकया इसको पिघला देता है। मैंने एक जगह लिखा था कि मोहब्बत तब तक मोहब्बत नहीं होती जब तक उसमें अकीदत ना हो। जब हम अकीदत के बिना मोहब्बत के जज्बे को परवान चढ़ाने की काविश में हुआ करते हैं तो मुमकिन नहीं है कि ये जज्बा अपनी मंजिल को पहुंच सके, और इसकी मंजिल तो है नहीं, ये तो सदा रहने वाला जज्बा है। लेकिन इंसान चूंकि खता का पुतला है तो ये खता करते हुए बहुत हम कह तो दिया करते हैं कि इंसान खता का पुतला है, लेकिन उसकी वजह की तरफ हमने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों है। अगर हम गौर करें तो ये खता जो हम इंसानों में पाई जाती है वो होती ही इसलिए है कि हम कुछ सीख सकें, क्योंकि इंसान वो वाहिद मखलूक है जो खाली जहन इस दुनिया में आते हैं, इसी दुनिया से सीखते हैं, जो कुछ मयसर आता है इसी दुनिया से, चाहे वो हमारी जबान हो, हमारी तहजीब हो, हमारा दीन हो, हमारी अखलाकियात हो। हाँ, लेकिन कुछ है जो उन्होंने भी वदियत करके भेजा है इंसान के अंदर, उसे एक वादा अलस्त के नतीजे में जब उन्होंने सवाल किया था अलस्तु बिरब्बिकुम, और हम इंसानों ने इकरार किया था कि तू है हमारा रब, उस वादा अलस्त के नतीजे में हमारी जात के अंदर अखलाकियात वदियत कर दी गई थी जिनके बिना पर हमसे सवाल होगा। अखलाकियात हमें बता दिया करती हैं कि क्या सही है क्या गलत है, फिर हमने जो कुछ अपने जहन के अंदर भर रखा होता है, अपने गिर्दो नवा से जो कुछ हमें मयसर रहा है, फिर उसकी कोई वक़्त रहती नहीं है जब हमारे अंदर से एक आवाज़ आ जाती है कि ये गलत है, और यह हुआ करता है शऊर के बेदार हो जाने के बाद। तो वो मोहब्बत जो हमें आगाज में बहुत खूबसूरत लगती है और वक्त गुजरने के साथ साथ धुंधली पड़ती चली जाती है, दर हकीकत मोहब्बत हुआ नहीं करती। अगर हम गौर करेंगे तो हमें उसमें अकीदत नजर नहीं आएगी, और फिर मजीद गौर करने पे मालूम पड़ेगा कि हमने सबसे बड़ी गलती ये की कि उस मोहब्बत के जज्बे को जो कि जावेदानी है और जो कि इंतहाई है, उसको हमने महदूद कर दिया था किसी एक शख्स के साथ। और मोहब्बतों के दम घुट जाते हैं जब उनको इतना महदूद कर दिया जाता है। मोहब्बत वो जज्बा है जो इस कायनात की हर शय में छलकता है, क्योंकि इस कायनात की तख्लीक जिन्होंने की है वो बहुत खूबसूरत है, और हम इंसानों की तख्लीक जिन्होंने की है बहुत मोहब्बत से की है। हमें अहसन तकवीम का दर्जा दिया, सबसे खूबसूरत तख्लीक।
اور یہ وہ تخلیق ہے جو ارادہ اور اختیار رکھتی ہے. اختیار ہوا کرتا ہے ہمارا ہماری ذات کے اوپر, ہم ارادہ کر سکتے ہیں. تو پھر جو کہا تھا کہ محبت میں جب ہم خود کو ہارا ہوا محسوس کرتے ہیں, تو در حقیقت یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آتا ہے. ایک تلاطم برپا ہو جاتا ہے ہماری زندگی میں, ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے جو سب کچھ پلٹ کر رکھ دیتا ہے. پھر ہم مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم وہ انسان نہیں تھے جو اب ہیں. بہت کچھ بدل چکا ہوتا ہے ہماری ذات کے اندر, اور وہ بدلاؤ کیسے مثبت بنانا ہے, کیسے مثبت کرنا ہے, یہ ہمارے ارادہ و اختیار پہ ہوا کرتا ہے. خود کو ترتیب دیا آخر کار اثر نو, زندگی میں تیرا انکار بہت کام آیا. اور ایک شعر میں نے کہا تھا کہ آتش زیست مجھے تیری جفاؤں سے ملی, آتش زیست مجھے تیری جفاؤں سے ملی, تو میرا ہوتا تو کچھ نام نہ ہوتا میرا. ان جذبوں کے عقدے جب کھلتے ہیں ہمارے سامنے جو حقیقی جذبے نہیں ہیں, تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ عقیدت کیا ہے. تو میں غور کرنے نکلوں تو مجھے معلوم پڑتا ہے کہ عقیدت اس کو کہتے ہیں جب آغاز کیا جائے ان کی ثنا سے, ان کی تعریف سے, ان سے گزارش کی جائے کہ اس سیدھی راہ جس کو وہ صراط مستقیم کہتے ہیں, اس پر چلنے والوں کی صفوں میں ہمیں شامل کر دیا جائے, اور پناہ مانگی جائے ان لوگوں سے جن پر ان کا عذاب ہوا, تو اس کے بعد جو تین حروف مخفی ہیں الف لام میم, اس پر کوئی سوال نہ اٹھے ہمارے ذہن میں. وہ جو کہہ دیں وہ منون تسلیم کر لیا جائے, پھر کوئی سوال نہ ہو, کوئی منطق درکار نہ ہو, تو دھیرے دھیرے محبت کے معنی سمجھ آنے لگ جاتے ہیں. اور پھر گہرائیوں میں اترتے چلے جائیں گے تو معلوم پڑے گا کہ وہ تو ہر جگہ ہم پر مہربان ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں, میں صبر کے معنی تلاش کرتا ہوں تو مجھے معلوم پڑتا ہے کہ جہاں میرا اختیار چل سکتا ہے, جہاں مجھے ارادہ دیا گیا ہے, وہاں میں اپنے ہاتھ کو روک لوں, اس کو صبر کہتے ہیں. جہاں میرے سامنے کھلا آسمان ہے, اس زمین کی وسعت ہے, وہاں میں اپنے آپ کو دائرے میں رکھوں, اس کو صبر کہتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ بہت جلد کچھ ایسا عطا کروں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے, تو میں غور کرتا ہوں میری زندگی میں وہ کون سے اوقات ہیں جب میں بہت خوش ہو گیا تھا, تو معلوم پڑتا ہے بہت کچھ ایسا گزرا, میں نے اس پر غور ہی نہیں کیا, ان لمحوں کو جیا ہی نہیں, میں تو کسی ایک غم کو لے کر بیٹھا رہا. تو پھر ذہن میں اور بہت سے جملے اور بہت سی باتیں گونجتی ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ تم شکر گزار بنو, میں تمہیں اور عطا کروں گا, تو مجھے معلوم پڑتا ہے کہ ہاں میں شکر گزار نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ بہت جلد کچھ ایسا بھی عطا کروں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے, تو میں شکر گزار نہیں تھا. اب جب کہ میں شکر گزار ہوں تو یقیناً وہ اور بھی عطا کریں گے, اور ایسا بھی عطا کریں گے کہ میں خوش ہو جاؤں گا. غرض کے ہر شے میں ان کی محبت ہے,
जब वो कहते हैं सीर उल फिलर्स, इस कायनात की, इस दुनिया की सैर करते हुए मुझे मालूम पड़ता है कि हर शय में उनकी मोहब्बत है, तो फिर जो पैगाम है वो यही है कि मोहब्बत की जाए, मोहब्बत के तकाजों को पूरा किया जाए, लेकिन उससे पहले मोहब्बत को समझा जाए, उसको महदूद ना किया जाए किसी एक इंसान तक। मोहब्बत वो जज्बा है जो ठीक उन्हीं की तरह उनकी सुन्नत को दोहराते हुए इस जज्बे से अपनी ज़ात को सरशार करना होता है, मोहब्बत को बांटना होता है, तो यह लौट कर आती है, पलट कर आती है। सबकी सुनते रहो, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो, चाहे बोले ना वो, लब को खोले ना वो, दिल अलग बात है अपने लहजे में भी प्यार घोले ना वो, अपना जो फर्ज है इस तरह हो अदा जैसे एक कर्ज है, कोई जो कुछ कहे उसकी सुनते रहो, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो। बेख्याली में ही लब अगर खुल जाए और जबां पर कभी कोई सच आ गया, यूं समझ लो कि फिर सिलसिले जितने थे दरमियां, जो भी ताखाब देखे थे जो, सब बिखर जाएंगे। ऐसा करना नहीं सबके सुनना, मगर तुम बिखरना नहीं। मसले सबके सब हैं सफेदों से, या मसलों में कभी रंग भरना नहीं। दिल में अगर प्यार हो, लब पे इकरार हो, प्यार ही प्यार बस हर्फ इजहार हो, गर अना ये कहे दिल ना मिल पाएंगे, इस पे मत जाइए, खोटी है ये अना, इससे कुछ ना बना। दिल की बातें सुनो फासले से, सही प्यार करते रहो और कुछ ना कहो। रास्ता एक है, मुद्दा एक है, एक हमारी है, क्या सारी दुनिया का ही सिलसिला एक है। एक आए थे हम, एक आए थे तुम, एक है ये सफर, भीड़ कितनी भी हो अपनी अपनी जगह हर कोई एक है। नाम है गो जुदा पर खुदा एक है, बस खुदा की तरह सबकी सुनते रहो, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो। कहने सुनने से तो कुछ बदलता नहीं, रात जाती नहीं, दिन ठहरता नहीं, होने वाला है क्या कुछ भी खुलता नहीं। वक्त कम है बहुत, इतने कम वक्त में जिस कदर कर सको, जिस कदर कर सको, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो। जिंदगी में जो दरकार हो तकसीम कीजिए, खुशियां चाहिए तो खुशियां बांटिए, आसानियां चाहिए तो आसानियों का सामान पैदा कीजिए, अपनी तकलीफ से राहत चाहिए तो किसी और के पाँव में चुभा हुआ कांटा निकालिए, रब ताला की नेमतों और बरकतों का नजूल होगा आपकी ज़िंदगी पर। कुछ अच्छा लगा हो तो दस्ते दुआ जब बुलंद होना चीज़ को याद रखिएगा, और कोई बात समाखराशी का बायस बनी हो तो माज़त चाहूँगा। सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले इतवार की शब आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। आतिर अली सैयद को अब इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने। एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।

0: terrorism नहीं करता है, तो ही चाइनीज कभी नहीं मरता। चाइना का ब्रेड कर रहा है, एक चाइनीज मरता।
1: दिस इज एफएम 101.1।

0: कर मगदा मैं तेरी रब्बा से यारा कर मगदा मैं तेरी।
1: दिस इज एफएम 101.1।